0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश

0: अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आईआईटी नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वलरिबिन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वलरिबिन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3 जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking its connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Minister of Petroleum and Natural Gas has said the process is not meant to deny LPG to any genuine household and every eligible consumer has several easy ways to complete it. In Mumbai, 2 people were killed and 4 others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near Ganesh Utsav Mandal in Kala Chowki early this morning. The injured were taken to a nearby hospitals. Of the injured is reported to be a critical condition, while 3 others are reported to be stable. In another incident in the state, 3 people were killed and 1 injured after a BMW car met with an accident on Mumbai's coastal road early this morning. The injured person has been admitted to

0: हर रविवार ठीक 12:10 पर हम घर के तानो बानो से सुसज्जित कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें मैं हूँ रेनू तवर और मेरे साथ हैं
1: यमुना
0: जी, और ग्रामीण बहनों और सखियों पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में स्वीकार कीजिए हमारा राम राम
1: राम राम, राम कहेंगे सखियों। देखिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी लेकर हम दोनों आए हैं और सच कहें तो आपसे मिलने की बहुत ही चाह होती है, और सिर्फ सखियां ही नहीं सुनती, सखियों के साथ सखा भाई भी सुनते हैं, पूरा परिवार सुनता है हमारा गृह लक्ष्मी कार्यक्रम। और गृह लक्ष्मी कार्यक्रम के जरिए हम बहुत सी जानकारियां भी देते हैं, आपका मनोरंजन भी हम कराते हैं, और विशेष तौर पे अगला क्या कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको हम बताते रहते हैं।
0: बिल्कुल, और हर तरह की जानकारी मिलती भी है और मनोरंजन भी होता है, तो जानकारी के साथ मनोरंजन के साथ बहुत सारी चीजें। आजकल सफाई का अभियान भी बहुत चल रहा है,
1: स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है ना।
0: आज 20 सितंबर है और आज ही के दिन हम सफाई दिवस मनाते हैं, जिसे कि दुनिया भर में कचरे और प्रदूषण को खत्म करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाती है ताकि सफाई की जाए। वैसे तो महिलाएं

0: अपने आप में ही इतनी सुसज्जित हैं कि वो घर में लगी रहती हैं सफाई करने
1: में। बिल्कुल सही कह रही हूँ। और सरकार द्वारा वर्ष 2026 में जो स्वच्छता को लेकर स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है, इस वर्ष अगर देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है ठोस कचरा प्रबंधन नियम के बारे में, मान ली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है। और स्वच्छता सेवा अभियान 17 सितंबर से अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक चलेगा ये। और थीम है इसका स्वच्छता से सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
0: बिल्कुल, तो सफाई अभियान बहुत जरूरी है और अपने आसपास भी सफाई रखें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात कही जाती है, तो ये हमेशा ध्यान रखें।
1: एक दिन एक घंटा एक साथ नारे के तहत नागरिकों को सामूहिक रूप से श्रमदान करने की अपील की जाती है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाएं और शहरी क्षेत्रों में विशेष परिषद बैठकें और आयोजित की जाती है, जिसमें कचरा नियमों पर चर्चा होती है। और साथ ही साथ एक बात और कहें रेनू, की जो नमामि गंगे परियोजना है तो देखा जाए तो ये स्वच्छता सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या मोहल्ले की नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारी नदियां भी स्वच्छ होनी चाहिए, मां गंगा भी स्वच्छ होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ पीड़ा है, ऐसी कुछ बात है, गीत के माध्यम क्या सुनाना चाह रही हो?
0: बिल्कुल, अब सुने फिर बताएं, आप सुनेंगे तभी पता चलेगा।

0: तो कितनी अच्छी बात है ना कि हमें हर जगह सफाई और अभियान हर चीज रखनी चाहिए, साफ सफाई, मन से भी साफ होना बेहद जरूरी है, क्यों? सही कहा ना यमुना जी
1: आपने, बिल्कुल कहा है, तन मन दोनों साफ होना चाहिए। जो अगर तन की सुंदरता बहुत ज्यादा नहीं है अगर रेनू, और मन अगर सुंदर है तो कितना भी तन का कैसा भी बसूरत क्यों ना हो, वो मन को प्यारा लगने लगता है।
0: और आज एक और बात बताना चाहूंगी यमुना जी कि 20 सितंबर एक खास दिन भी होता है, जैसे आरपीएफ स्थापना दिवस भी माना जाता है, और इस आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी खेल दिवस भी होता है, और बहुत सारे जो दिवस हैं आज के खास होते हैं। और उसी तरह से हम बात करेंगे, या महिलाएं जो हैं हर जगह अपने पांव फैलाए हुए बैठी हुई है, वो चाहे घर हो बाहर हो, अब हर जगह उसने अपना स्थान बना लिया है। तो अब कार्यस्थल की बात की जाए, कहीं बाहर जाती हैं तो उनको बड़ा डर रहता है कि वहां हम सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे। कार्यस्थल पर एक सुरक्षा का भाव होना भी बेहद जरूरी है। कहीं कहीं सुरक्षा और अधिकार की बात की जाए तो डर लगता है महिलाओं को, और आज तक हमें भी लगता है कि हमारी बेटियां अगर बाहर जाएंगी तो कहीं वो सुरक्षित होंगी भी या नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और सच कहें तो बहनें जो है ना बाहर यूं ही नहीं निकल रही हैं, जो आज की जरूरत है या आज की मांग है। और अगर देखा जाए समय की मांग ये है कि अगर दोनों कमाते हैं तभी घर की गृहस्थी हमारी चल पाती है। अकेला व्यक्ति अगर कमाता है ना तो उस इनकम से पूरा घर नहीं चल सकता है। तो ऐसे में अगर महिला पढ़ी लिखी है, अगर नहीं भी पढ़ी लिखी, थोड़ी देर के लिए हम ग्रामीण स्तर की बात कर लें, तो वो महिलाएं हैं जिनके अंदर हुनर है और हुनर के दम पे वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो छोटे छोटी चीजों से भी वो आगे बढ़ सकती हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है मेला लगता है, तो उसमें क्या होता है, लखपति दीदियां आती हैं। लखपति कैसे बन गई? अरे उनके अंदर बहुत सी हुनर है, खाने बनाने के हुनर है, फूड प्रोडक्शन का सारा हुनर है, कढ़ाई बुनाई का हुनर।

0: हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजों को लोग हाथों हाथ खरीदते हैं, महंगे दामों पे भी खरीद लेते हैं। तो ऐसी पुरानी बहुत सी चीजें हैं जो बांस की लकड़ियों को फाड़ करके उससे बनाया जाता है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे वो फायदा उठा लेती हैं। तो खास करके अगर हम बात करें तो महिलाएं अगर कार्यस्थल पर जा रही हो, कोई काम वो कर रही है, तो उनको बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं जिसके लिए शिकायत करना वो जरूरी समझती है। तो इसके लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाया गया है जिसके तहत स्थान में जैसे जहां पे 10 लोग एक साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां अध्यक्ष के रूप में एक महिला वरिष्ठ अधिकारी भी होती है, उनसे वो अपनी शिकायत कर सकती हैं।
1: और इसी कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है भारत संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 14, 15 और 21 में ऐसा समानता और स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद बनाया गया है जिसमें कि आप व्यवसाय पर अदालत या कारोबार पर जो है वहां पर आप अपने सुरक्षा महसूस कर पाएंगे, आपको इसका हनन नहीं होगा, आप इस पर अपनी आवाज उठा सकेंगे।
0: बिल्कुल। और राइट टू इक्वल पे की हम बात करें तो समान वेतन का अधिकार, अगर वो समान रूप से साथ साथ काम कर रही है, उतनी ही मेहनत कर रही है, तो उन्हें उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को मिल रहा है। और मातृत्व लाभ की हम बात करें रेनू, तो देखिए मैटरनिटी जो बेनिफिट्स होते हैं उसके जो राइट होते हैं, इसके तहत कामकाजी महिला 26 सप्ताह यानी 6 मंथ का 6 महीने का सवैतनिक मातृत्व अवकाश उसको मिलना है, उसका अधिकार है।
1: बिल्कुल। तो राइट टू डिग्निटी भी होना चाहिए कि जहां वो जाए उसे पूरा अधिकार हो, पूरा मान सम्मान मिले उसी तरह से। तो ये भी बहुत जरूरी है कि काम काज करने की जगह मौलिक अधिकार का हनन ना हो।
0: बिल्कुल, जिससे वो अपनी जो पंख है ना उसे फैला के
1: उड़ सके।
0: बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है कि शिकायत का एक और है सी बॉक्स पोर्टल की हम बात कर लें तो भारत सरकार की महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी है सी बॉक्स पोर्टल। हाँ, इस पे भी आप शिकायत कर सकती हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी आप शिकायत कर सकती हैं।
1: और हेल्पलाइन नंबर है ना, एक हेल्पलाइन नंबर है 1091 और 112 और 100।
0: हाँ, तो इस पर भी आप कर सकती हैं। तो जो पंख है ना फैलाइए,
1: बिल्कुल डरिए नहीं, आप अपने आजाद हैं, आपका ही देश है, आप ही के अब लोग हैं, तो चलिए उड़ते हैं
0: और इस गीत को हम भी थोड़ा सा गुनगुना लें।
1: बिल्कुल।
0: उड़ते

0: हाँ भाई, अब हम रुक जा तो नहीं, हम बहते चले जाएंगे इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो ग्रामीण सखियां हैं और हमारे जो श्रोता हैं, वो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और सुनना ना बोले कि हर रविवार 12:10 पर हम शामिल हाजिर हो जाते हैं। और पोषण की बात कहूं तो मैं ना, हम माएं बहुत ध्यान रखती हैं कि भाई बच्चों को सही तरीके से खाना मिले, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना, खाना यमुना जी सही से खाते नहीं है। सही कह रही हूं ना?
1: तो जो आप कह रही है ना, तो सच कहें, खाने की जो बात आती है, पोषण की बात आती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम अपने पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो ऐसी कुछ ध्यान की बातें हम लेकर के आए हैं बहनों के लिए, जो भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए और हमारी इस बातचीत को सुने, जिसमें सरिता गुप्ता जो कि लेखिका भी है और शिक्षिका भी है, इनसे बातचीत कर रही नीलम मदान। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता गुप्ता, आप हैं लेखिका एवं शिक्षिका, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि बच्चों के पोषण में माँ की क्या जिम्मेदारी है।

0: डॉक्टर सरिता, हम शुरू करते हैं कि क्या है माँ की जिम्मेदारी।
1: बहुत कुछ आपने अपने वक्तव्य में कहा कि माँ की जिम्मेदारी सबसे महती भूमिका होती है, क्योंकि माँ का जो संबंध है वो बच्चे के साथ अन्य परिवार की अपेक्षा, समाज की अपेक्षा 9 महीने पहले जुड़ जाता है। माँ क्या सोचती है, क्या विचारती है, कैसा उसका दर्शन है, कैसी उसकी दिनचर्या है, कैसा उसका खान पान है, इन सब से बच्चा गर्भ से ही प्रभावित होने लगता है। और अगर मैं कहूँ कि वहीं से बच्चे का पोषण शुरू हो जाता है तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसा माँ सोचती है वैसा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अभिमन्यु का प्रसंग सर्वविदित है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। तो इस तरह हमारे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि माँ का आचार विचार, माँ का व्यवहार बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त आज के परिवेश की अगर मैं बात करती हूँ, आज के परिवेश में बच्चे के पोषण में माँ की भूमिका के साथ साथ परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आजकल एकल परिवार है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। पहले दादा दादी और ताया ताई जो होते थे वो बच्चों को अपने ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से बच्चों में बचपन से ही संस्कार भर देते थे। और पोषण की अगर मैं बात करती हूँ तो पोषण सिर्फ भोजन ही नहीं होता, मानसिक आहार भी पेट के आहार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
0: जी डॉक्टर सरिता गुप्ता, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो पोषण है वो शुरू हो जाता है गर्भावस्था के पहले दिन से ही, यानी कि प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात भी वो प्रक्रिया यथावत बनी रहती है पूरी। वो हमें सजग रहना है, सचेत रहना है एक माँ को कि वो अपने बच्चे के लिए भरसक पोषण का प्रबंध करे। तो जैसा आपने कहा कि अब ये प्रसव के पश्चात यानी कि प्रसव से पूर्व माँ को ऐसा क्या जो है खान पान अपना रखना चाहिए संतुलित, जिससे वो जो पूरी प्रक्रिया है वो बिल्कुल सफल और सार्थक तरीके से पूरी हो।
1: माँ को सबसे पहले तो जंक फूड से बचना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में जो केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव हैं, वो एक स्वस्थ इंसान के लिए भी हानिकारक हैं। तो वह बच्चा जो इस दुनिया में ही नहीं आया, वो आहार नली के माध्यम से माँ जो भी खाती है उसको ग्रहण करता है, तो सबसे पहले तो माँ को जंक फूड, बासी भोजन, देर रात तक भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि माँ स्वयं स्वस्थ होगी तभी वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेगी। इसके अतिरिक्त जो डॉक्टर्स के द्वारा उसको सलाह दी जाती है विटामिन्स की और आयोडीन की, या जो भी उसकी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो डॉक्टर समय समय पर चेकअप जो करती है तो उसके हिसाब से जो डॉक्टर की सलाह है उसको बिल्कुल भी अनदेखा और अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में वैसे ही प्रदूषण इतना ज्यादा है और खान पान वैसे ही शुद्ध नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें मल्टी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है बच्चे को और माँ को स्वस्थ रखने के लिए, और माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। और इसमें परिवार की भी महती भूमिका होती है कि गर्भवती महिला को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इस चीज का हमें ज्ञान देना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए कि गर्भ अवस्था में पत्नी के साथ होने वाले जो मूड स्विंग्स हैं या खाने पीने में बदलाव हैं, स्वास्थ्य की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कंपेयर ना करें किसी दूसरी महिला से, क्योंकि सभी के शरीर की अपनी अपनी स्थितियां होती है।
0: डॉक्टर सरिता गुप्ता, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि जो पहले 6 साल है वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब बच्चा छोटा है तो क्या उनके पोषण के लिए माँ को ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो बच्चा 6 वर्ष तक का होता है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत स्ट्रोंग नहीं होती है। सर्दी गर्मी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, जरा सा भी उल्टा सीधा खा लेता है तो पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उसका जो पाचन स्थिति है वो बहुत अधिक मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे में बच्चे को पौष्टिक और हल्का आहार देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को हल्का ही देते रहें, क्योंकि अगर हम बच्चों को सभी चीजें खाने की आदत नहीं डालेंगे तो बच्चा वैसे ही कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ बच्चे को खाने के लिए देना चाहिए, चाहे वो राजमा हो, छोले हो, भिंडी हो, क्योंकि अक्सर घर की दादी नानी कहा करती थी माँ को भी तुम ये मत खाओ, बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि 40 दिन तक जो हमारी एक व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संस्कृति में, 40 दिन

0: के बाद हमें धीरे धीरे सब कुछ बच्चे को देना चाहिए, लेकिन हमें डॉक्टर की भी सलाह ले लेनी चाहिए कि आंतरिक रूप से बच्चे को कोई ऐसी बीमारी ना हो। क्योंकि आज के समय में मैं देखती हूँ कि आजकल एक तो सिजेरियन बहुत ज्यादा होने लगे हैं, जो हमने अपने समय में कभी नहीं सुने थे। तो उसके कारण कई बार क्या होता है कि आजकल बड़ी उम्र में लड़कियों के विवाह हो रहे हैं, तो शारीरिक क्षमताएं भी कम हो रही हैं, उसमें बच्चों को जो है शारीरिक रोग गर्भ से ही हो जाते हैं। हालांकि समय समय पर चेकअप भी बहुत होने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेशल चाइल्ड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए कि बच्चे को भोजन में, आहार में, किसी वस्तु से, किसी खाने पीने की चीज से हमें परहेज तो नहीं करना है। और अगर ईश्वर कृपा से बच्चा स्वस्थ है तो उसको सब कुछ हमें खाने के लिए देना चाहिए। कई बार क्या होता है, माँ लाड़ में आकर ज्यादा दे देती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को सब कुछ सुपाच्य हो, उपाच्य ना रहे।
1: मतलब जैसे आपने कहा, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी उनको देनी चाहिए ताकि उनकी आदत बनी रहे। और उससे क्या होता है, अगर अच्छा पोषण मिलता है तो आपका जो है भावनात्मक विकास, यानी कि आप बच्चे खुश रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या बच्चे का समय समय पर वो सारी चीजें, समय पर चलना, वो कहते हैं ना क्रॉल करना, आपके घुटनों के बल चलना, फिर थोड़ा उठना, क्या ये चीजें समय पर हो रही हैं?
0: ये समय पर होंगी, बिल्कुल हो भी रही हैं, लेकिन अगर बच्चा किसी अस्वस्थता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आज के समय में मुझे लगता है उसको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से चेकअप, तुरंत सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट।
1: जी बिल्कुल, सजग रहना चाहिए ताकि अगर उनकी जो भी समय पे गतिविधियां बच्चे करते हैं, अगर उनमें कहीं देरी हो रही है तो वो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। जिम्मेदारी तो माँ की है ना, परिवार की है जिम्मेदारी,
0: बिल्कुल परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल कामकाजी महिलाएं हो गई हैं, तो हम घर में भी देख रहे हैं कि माँ बच्चों को वो संस्कार, वो पोषण, वो समय नहीं दे पा रही है जिसकी बच्चों को बाल्यावस्था में जरूरत होती है।
1: आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए ना, अच्छा कुपोषण से मतलब क्या केवल कमजोर होना है? जो बड़े मोटे मोटे बच्चे होते हैं क्या वो कुपोषित होते हैं, नहीं होते हैं?
0: मेरा मानना है कि अगर आपका वेट उम्र से और आपकी हाइट के अनुसार ज्यादा है तो वो बच्चा कुपोषण की श्रेणी में आता है।
1: बिल्कुल सही बात है कि आजकल
0: ये फैटी होना अपने आप में एक बीमारी है, पतला होना, वेट कम होना वो एक अलग चीज है, लेकिन बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और उसमें महती भूमिका माता के साथ साथ पिता की भी पूरी है, क्योंकि जब महिलाएं घर से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से आपको सहयोग दे रही हैं, तो पुरुष वर्ग का भी ये दायित्व बनता है कि वो घरेलू कामों में, चाहे वो बच्चों की परवरिश है, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, चाहे उनका खान पीन है, उनमें बराबर का साथ दें। क्योंकि बच्चा सिर्फ माँ का साथ नहीं चाहता, वो मानसिक रूप से पिता का भी उतना ही साथ चाहता है, जो उसको खुशी प्रदान करता है, उसको स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, भावनात्मक रूप से उसे मजबूत करता है। और मुझे लगता है जो बच्चा भावनात्मक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है, वो कभी कुपोषण का शिकार हो ही नहीं सकता। बाकी जीवन है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आती रहती हैं, हर समस्या का समाधान है, लेकिन भावनात्मक लगाव होना परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों का माता पिता से और माता पिता का बच्चों से, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बच्चे हमारे भविष्य की नींव है, इनको अगर हम मजबूत और स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेंगे।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर।
0: एक बात और नीलम जी मैं कहना चाहूंगी, जिस समय माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो सिर्फ उसको आहार नहीं देती, वो उसके अंदर संस्कार रोपती है। क्योंकि बच्चा जब माँ के स्पर्श को महसूस करता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और उस समय, इसीलिए कहते हैं जिस समय माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस समय उसको कोई ना कोई अपना धर्म से संबंधित मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर जो है आध्यात्मिक विकास भी होता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। कहते हैं कि घर की जो महिला होती है वो अन्नपूर्णा होती है, और हम जिस भावना से सामने वाले को भोजन परोसते हैं उसके अंदर उसी तरह की भावनाएं देने वाले के प्रति होती हैं। तो इसीलिए चाहे हम बच्चों को भोजन परोसें, परिवार के किसी सदस्य को भोजन परोसें, अपना भावना शुद्ध रखनी चाहिए। और बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, तो उन्हें जिस आकार में हम ढालना चाहें वो ढल सकते हैं। कितना ही बीमार बच्चा हो, माँ की अच्छी देखरेख से तो माँ वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सके।
1: क्या बात है डॉक्टर सरिता गुप्ता, असंभव को भी संभव बना सकती है माँ। इसी के साथ को धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सरिता गुप्ता।

0: कितनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिन जानकारी दी थी हमें लेखिका शिक्षिका सरिता गुप्ता जी से, और बातचीत का जो विषय था वो था बच्चों के पोषण में माँ की जिम्मेदारियां, और इसमें जानकारी बातचीत जो कर रही थी वो नीलम मैदान।
1: बिल्कुल जो सही कह रही हो रेनू कि जो ये पोषण होता है, माँ का जो स्वास्थ्य होता है तभी सुरक्षित रहता है जब वो अपने पर ध्यान देती हैं, और जब अपने पर ध्यान देती हैं तो जाहिर सी बात है चमकती नजर आएंगी। और वही है ना कि कहेंगी कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ, बड़ी सुंदर लग रही हूँ, तो फिर दूसरा भी कोई कहेगा, क्या कहेगा मैं बताऊँ
0: बताओ।

0: हाँ भाई, हम महिलाएं हैं ना, हम घर पे बैठे बैठे मुझे लग रहा है नाच रही होंगी पक्का।
1: और हम गीत ऐसे सुनवाते हैं ना कि मस्ती में झूम उठती है,
0: मस्ती में झूम उठते जैसे हम दोनों यहाँ झूम रहे थे। अच्छा, महिलाओं के पास ना बहुत सारे हुनर होते हैं, घर में बैठी वो बहुत सारे हुनर को लेकर, हम कहते हैं ना बचपन से ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ, जैसे बोलने का तो हुनर है ही, उसके साथ साथ जैसे
1: अपनी वही अपने मुंह या
0: मिट्टू बन गए। बिल्कुल, तो हम सोचते हैं अरे हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके पास इतना बड़ा

0: खजाना है जो आपने शायद कभी अपने आप को पहचाना ना हो। तो हम आपको बता दें कि आप बुटीक खोल सकती हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, आप हस्तशिल्प में या होममेड जो मोमबत्तियां बनाना, साबुन बनाना, पेंटिंग करना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। और रेनु देखो, आज के समय की अगर हम बात करें तो गांव की जो महिलाएं हैं ना, बिजनेस केवल अतिरिक्त आय या साधन पाने के लिए नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक प्रभावी जरिया भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित थे, वहीं अब खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी नए अवसर तेजी से बढ़ा रहा है। और ऐसे में जब कोई चीज वो बनाती हैं और जब कहीं पे डालती हैं वो डिजिटल तरीके से कि आप इस पर लीजिए, तो एक प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा जरिया मिल गया है। और कुछ नहीं भी आता है उसको मॉडिफाई करना है, थोड़ा और अच्छे नए रूप में देना है, तो उसको उसका भी तरीका उनको उस पर मिल जाता है, मोबाइल से ही मिल जाता है। तो मोबाइल है ना, उसका सदुपयोग कर ले उसका, तुम्हारी बहनें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। हुनरमंद तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी कोशिश बस चमक जाएंगी आप।
0: और कहते हैं ना, खाना तो इतना अच्छा बनाते हैं आजकल, तो ये खाना बनाकर भी लोग बाहर देने लगे हैं। घर का खाना सभी को पसंद है, और कुछ लोग बच्चे आते हैं जो बाहर आते हैं, उन्हें खाना चाहिए होता है घर का। तो आप ये भी एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कम लागत में आप कैसे व्यवसाय कर सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस आप खोल सकते हैं। और सरकार ने भी इसको एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी दी है, उद्योगिनी योजना भी है, जिससे कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं।
1: एक बात और है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात कर लें तो एक दो महिलाएं अगर हैं और चार छह हैं इकट्ठा हैं, तो स्वयं सहायता समूह बना करके भी आप इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और रही बात पैसे की, तो जो है वित्तीय सहायता सरकार आपको देती है, आप उसका लाभ लीजिए, 5 लाख से भी ऊपर मिल सकता है आपको। तो ये एक बात और है कि आप जैसे अचार, पापड़, चिप्स, कचरी कुछ भी आप बनाती हैं, और एक चीज और है रेनू की, मिलेट की हम बात कर लें तो जो मिलेट होते हैं ना, उनसे जैसे रागी, बाजरा, मक्का, इन सारी चीजों को ना छोटे छोटे पैकेट में करके भी आप बेचना शुरू करती हैं, इसका भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है।
0: बिल्कुल। और ये देखिए ना कि जो मिलेट से हम चीजें बनाते हैं ना, वो एक पोषण भी मिलता है और एक अच्छी बच्चे को आदत भी पड़ जाती है कि चलो हम एक अच्छा भोजन कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। उद्योतनी योजना जो है, 3 लाख तक का आसान लोन मिल जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख तक का ऋण मिल जाता है। तो आप घबराएं नहीं, बस हिम्मत जुटाएं और काम शुरू कर दें।
1: बिल्कुल। और जब आपके गांव कोई आएगा ना, तो फिर ये समझ लीजिए कि उसी में खो जाएगा। कैसे? इस गीत के जरिए।

0: हाँ तो यमुना जी, हम कोई आएगा गांव तो आएगा, हमारे यहाँ पे भी कोई आएगा है ना। और हम बात करें प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की, तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देने का एक पहली ये पहल है। और इसका पूरा नाम धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता और पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम भी है। इसके जरिए हम राज्यों को वैकल्पिक खाद अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: और सच कहें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि रासायनिक जो उर्वरक है उसके उपयोग को कम करके जैविक और वैकल्पिक उर्वरकों को खाद को बढ़ावा दें। और साथ ही ऐसा करने से देखें तो मिट्टी की जो सेहत वो सुधरेगी और इससे जैविक खाद मतलब जो ऑर्गेनिक आप रोपण करते हैं उसकी बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना सब्सिडी की बचत पर आधारित है, मतलब जैसे किसी राज्य ने अपने प्रयासों से रासायनिक खाद का उपयोग कम करके केंद्र सरकार की 1,000 करोड़ रुपए बचाए तो केंद्र सरकार उस राज्य को 500 करोड़ का इनाम देगी।
0: क्या
1: तरीका है? मतलब इसका अलग से कोई बजट
0: नहीं है, यानी कि रासायनिक खादों पर मिलने वाली सब्सिडी का बोझ भी कम हो जाएगा।
1: तो वही धरती है ना, जब पुकार के कहती है तो क्या कहती है।

0: आज है खास 20 सितंबर यानी कि डॉक्टर एनी बेसेंट की पुण्यतिथि। उनका निधन 20 सितंबर 1933 को मद्रास में हुआ था। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाज सुधारक, थियोसोफिस्ट एंड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नेता रही हैं और उन्होंने प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी वो चुनी गई थी 1917 में।
1: बिल्कुल, और वीरांगना क्रम में हम बात करें दुर्गाबाई देशमुख की, तो आजादी के आंदोलन के दौरान समूचे दक्षिण भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की। गांधी जी से ये काफी प्रभावित थीं और 10 साल की उम्र में ही इन्होंने बाल समिति भी बना लिया था। कुल मिलाकर करके अगर देखा जाए तो इन्हें दुर्गाबाई देशमुख जी को जॉन ऑफ ऑर्क के नाम से पुकारते थे और क्रिमिनल एडवोकेट भी थीं और संविधान सभा के पैनल में सिंगल अगर देखा जाए तो पहली महिला ऐसी थी जो उन्हें सभा में शामिल किया गया था। और भारत में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए 1958 में गठित नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की पहली अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी।
0: बिल्कुल, और 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की अध्यक्ष रही हैं ये। इन्होंने बहुत सारे जो कहते हैं ना, और इन्हें समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट योगदान दिया, तो जिसकी वजह से उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और यूनेस्को शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया।
1: एक बात और बताऊं रेनू, अभी जो दिल्ली के पिंक लाइन है साउथ कैंपस का मेट्रो स्टेशन, तो दुर्गाबाई देशमुख के नाम से ही है। और सबसे बड़ी बात है जो न्यायालय में फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई वो भी दुर्गाबाई देशमुख की ही देन है। तो वो देश पर हम जान लुटाएंगे ऐसे लोगों के लिए, जैसे होता है कि इन्होंने अपनी जान को आगे दिया हम लोगों के लिए। आज हम आराम से बैठे हुए हैं, आबो हवा में अच्छे से जी रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता दें कि एशियाई खेलों का शुभारंभ
0: हो चुका है जो कि जापान के आईची नागोया में हुआ है और इसमें भारत के 503 सदस्य और 234 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।
1: बिल्कुल।

0: देश पर जान लुटाएंगे, लेकिन अब कहें कि कार्यक्रम का समापन की तरफ है हमारा गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, तो अगले कार्यक्रम के बारे में भी हम बता दें। एफएम रेनबो पर आप शाम 5:30 से 6 बजे के बीच कार्यक्रम सुन सकेंगे फार्म टू सिटी, जिसका विषय होगा एफपीओ संगठित खेती और बेहतर कमाई। साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ लाइव, जिस पर आप अभी सुन रहे हैं, इस पर सुन सकेंगे प्रतिदिन की तरह लोकरंजनी कार्यक्रम 5:10 से लेकर 5:30 तक, और ग्राम संसार जो हमारा कार्यक्रम होगा 6:30 से लेकर के 7 बजे तक सुन सकेंगे, और साथ ही 7:05 से लेकर 7:35 तक आप कृषि जगत कार्यक्रम, जिसमें आप पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुन सकेंगे, और कृषि जगत में कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम में सुन सकेंगे लोक संगीत।
1: तो कार्यक्रम आपको कैसे लगा ये आप हमें बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं। कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001, ईमेल आईडी feedback@gmail.com। इसी के साथ हमारा आज का गृहलक्ष्मी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार परासर, कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को हमारा राम राम, राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
3: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हीरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देशी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में 1 रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
2: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of next month. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Vice President C.P. Radhakrishnan will inaugurate the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi the day after tomorrow. The five-day event has been organized on the theme Climate Resilient Water Management. Iran has communicated its conditions to international mediators for restarting negotiation with the United States. It has also warned that Tehran is prepared for a decisive war if Washington rejects its demands. Mohsen Rezai, Secretary of Iran's Supreme National Security Council, said Iran's conditions included an end to the war on all fronts, the release of frozen Iranian funds, and an end to the naval blockade. In a separate social media post, Rezai said Iran has announced 7 conditions for beginning negotiations with Washington and described Tehran's position as clear and unambiguous. In Bangladesh, multiple crude bombs were exploded at a crossroads in Dhaka's Jatrabari a day after similar blasts outside the local police station. A rickshaw puller has been injured in the latest incident. 3 buses were set on fire in separate incidents in Dhaka last evening. Against the backdrop of the incidents, the Dhaka Metropolitan Police has strengthened security across the city, and police patrols and surveillance have also been increased. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana and Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. The Met Department said the similar conditions are expected over Chhattisgarh and other northeastern regions for the day. On to sports and Asian Games 2026, India's campaign continues strongly on the second day in Japan. India's Elavenil Varadivan clinched a silver medal in the women's 10-meter air rifle event at the Aichi Nagoya Asian Games in Japan today. Earlier in the day, India secured the silver medal in the women's 10-meter air rifle team event with Elavenil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsha Vinod combining to deliver the country's first medal of the games. The Indian trio finished with a team total of 1,898 points, placing them behind China in the standings. In swimming, Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100 meters breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds. Finals will be played this afternoon. In hockey, the Indian women's team began the campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener today. In women's cricket, India has set a target of 196 against Bangladesh in the second semi-final.

0: Asian Games. Earlier, India won the toss and opted to bat first. Shefali Varma has made history as she brings up a maiden white ball international 100 and becomes the first batter to score a century in the Asian Games. Meanwhile, opener Smriti Mandhana has become the leading run scorer in women's T20Is. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड हुए हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से.

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर शुरू हो चुका है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज आपके साथ है आपकी अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी। स्वागत है आप सभी का।

साथियों, मेरे दिल ने जो मांगा वो तो आज मिल गया मुझे, और हो सकता है आपके दिल ने भी जो चाहा वो पूरा हो गया है आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से। क्योंकि आज हम लाए हैं 1971 में आई एक ऐसी फिल्म जिसमें प्यार है, परिवार, दोस्ती, दुश्मनी, रहस्य और एक्शन। हो सकता है फिल्म का गाना सुनकर आपने फिल्म के नाम का अंदाजा भी लगा लिया हो। फिल्म का नाम है रखवाला। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं धर्मेंद्र, लीला चंद्रवरकर और विनोद खन्ना। फिल्म का निर्देशन अदुत्री सुब्बाराव ने किया था और संगीत दिया था मशहूर

कहा है इस गीत में, रहने दो ये गिले शिकवे, जब तक है करो प्यार की बातें, प्यार से करें सारी मुलाकातें। तो भाई आज हम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कर रहे हैं 1971 में बनी फिल्म रखवाला की बातें। तो आइए गीत के बाद बात कर लेते हैं फिल्म रखवाला की कहानी के बारे में संक्षिप्त में। रखवाला की कहानी के केंद्र में है दीपक, जिसकी भूमिका निभाई है धर्मेंद्र ने। दीपक एक जिम्मेदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला युवक है। उसकी जिंदगी में उसका छोटा भाई सुरेश और उसकी माँ बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक की जिंदगी में प्यार बनकर आती है चांदनी, जिसका किरदार निभाया है लीना चंद्रवरकर ने। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं है। कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है श्याम का, जिसे निभाया है विनोद खन्ना ने। दीपक और श्याम के बीच रिश्ते धीरे धीरे तनावपूर्ण होते जाते हैं और वहीं से कहानी में प्रेम के साथ साथ दुश्मनी और साजिश का रंग भी गहरा होने लगता है। कहानी में आगे बढ़ती है कुछ इस तरह कि दीपक की माँ की तबीयत खराब होती है। उसे अपने छोटे बेटे सुरेश के भविष्य की चिंता है। वो दीपक से सुरेश की रक्षा करने का वचन लेती है। दीपक अपनी माँ को वचन देता है कि वो हर परिस्थिति में, चाहे कैसा भी संकट आए, अपने भाई की रक्षा करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। परिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये रहस्य गलत हाथों तक पहुंच जाता है और सुरेश की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। वो मोड़ क्या है, जानेंगे इस छोटे से अंतराल।

0: साल के बाद।
1: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड ओपन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी, समय समय पर ऐसी जानकारियां भी जरूरी हैं। तो कहानी में हम बात कर रहे थे एक ऐसे मोड़ की जिसमें कहानी कुछ मुड़ती है और अपने कुछ अलग अंदाज में पहुंचती है। तो फिर कहानी में आता है जो सबसे बड़ा मोड़, वो हम आपको बताने जा रहे थे कहानी में इस संदेश से पहले। तो होता है यूं कि सुरेश की हत्या हो जाती है और हत्या का आरोप दीपक पर लगा दिया जाता है। जिस भाई की रक्षा करने का वचन दीपक ने अपनी माँ से लिया था, उसी भाई की हत्या के आरोप में वो खुद फंस जाता है। अब दीपक के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तरफ अपने ऊपर लगे आरोप को गलत साबित करना और दूसरी तरफ उसी असली अपराधी को ढूंढना जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया। कहानी को जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम को जारी रखने के लिए गीत सुनना भी बनता है।

साथियों, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का ये गीत बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये है फिल्म का शीर्षक गीत। और आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज सुन रहे हैं आप फिल्म रखवाला, जो रिलीज हुई थी 1971 में। आप बने हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम सुनकर आपको आनंद आ रहा होगा और गीत आपकी ही पसंद के बज रहे होंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जल्दी से भेजिए ipradiodelhi@gmail.com पर। तब तक हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जो फिल्म की कहानी अब रहस्य और रोमांच को और भी बढ़ाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक के खिलाफ परिस्थितियां लगातार मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन सच्चाई को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे पुराने रिश्तों, दुश्मनी और छिपे हुए राज सामने आने लगते हैं। दीपक को ये साबित करना है कि वो अपने भाई का हत्यारा नहीं है, और यही फिल्म का शीर्षक रखवाला अपना असली अर्थ सामने लाता है। रखवाला यानी वो व्यक्ति जो अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हर मुश्किल का सामना करे। दीपक भी अपने परिवार और सच्चाई की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। चलिए जानते हैं अब फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। अब बात करते हैं फिल्म रखवाला से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। तो पहली बात ये कि ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी और इसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसी दो लोकप्रिय कलाकार एक साथ नजर आए। इसी के साथ फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने दिया था। फिल्म के गीतों में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों की आवाजें आपको सुनाई देती हैं। तीसरी खास बात, रखवाला तमिल फिल्म कावला कारन का हिंदी रूपांतरण थी। और खास बात यह कि फिल्म में रोमांस और गीत संगीत के साथ साथ रहस्य और एक्शन को भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। साथ साथ अगर हम गीत संगीत की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना सुन लेते हैं इसी बात पर एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

और साथियों देखते ही देखते हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी हैं बहुत सारी ईमेल्स और आपने हमें भेजना शुरू कर दिए हैं अपने बहुत सारे संदेश और प्रक्रियाएं। तो चलिए लेना शुरू करते हैं कार्यक्रम में सबसे पहला संदेश एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, और आप हैं हमारे भेजने वाले श्रोता। ये हैं हमारे श्रोता सुदर्शन शाह और ये लिखते हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। और अगला जो संदेश हम लेना चाहेंगे वो है आर कुमार, नमस्कार वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी, आरती लवली और इनके सभी साथी। अगला संदेश आया है अजीत भावसार का, इन्होंने फिल्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लिखी है जो कि हमने आपको जानकारी बताई हुई है, और फिल्म की कहानी के बारे में भी लिखा है। बहुत अच्छी जानकारी आपने इस फिल्म की साझा की है, धन्यवाद साथी। इसके साथ ही आई है बिट्टू गगनेजा जी की, ये लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा के साथ इन्होंने हमें ईमेल की है। इसके साथ आई है ईमेल गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें भेजते हैं, और हरजिंदर शिंदा जी हमें भेजते हैं गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर शिंदा, जसविंदर, जस्सी, सीता और गीता, और ये लिखते हैं खुश रहो और खुशियां बांटो। इस संदेश के साथ ये हमेशा अपना संदेश भेजते हैं। अगला संदेश हमें भेजा है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने, और ये लिखते हैं कि ये एक ही फिल्म से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छूने वाले गाने बहुत ही सुकून दे रहे हैं, धन्यवाद इस प्यारी सी प्रक्रिया के लिए। अगली ईमेल हमें भेजी है कमलकांत गुप्ता ने पेपरिया से, और इनके साथ है श्रीमती दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। अगली ईमेल आई है आरजे मैडम सुनी दीदी गुप्ता जी नमस्कार, तो माफ कीजिएगा मेरा नाम तृप्ति जौहरी है और आप हैं हमारे साथी सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। और अगली ईमेल आई है हमारी कार्यक्रम में संजय ढींगिया जी, ये हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये लिखते हैं आज की फिल्म रखवाला के गीत व जानकारी इन्हें पसंद आ रही है, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद। और अगली जो ईमेल आई है ये आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, आप हैं पीएस नहवकर, निर्मला, विशाल और सोपान तायड़े, तो धन्यवाद आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अगली ईमेल आई है फारूक अली खान की, और इनके साथ हैं आपके परिवार के सभी सदस्य। अगली ईमेल हमें भेजी है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, और ये लिखते हैं शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारी बधाई अवश्य ही स्वीकार करें। तो हमने आपकी बधाई अवश्य ही स्वीकार करी है साथी। रोजी डिकेस्ट्रो हमें भेजते हैं जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, और इसके साथ हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, ये लिखते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आज की आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको

बहुत बहुत धन्यवाद। और भूषण खेरा जी आप लिखते हैं फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से, भूषण खेरा, विशु, विशाल, शालिनी, तिवानी और आपके परिवार के सभी सदस्य। और जो मेल्स आई हैं हमें वो आई हैं, बहुत सारी हमारे साथियों ने मेल रिपीट रिपीट भेजी हैं तो हम ले नहीं पा रहे हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

तो श्रोताओं, ये थी वर्ष 1971 की फिल्म रखवाला की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें माँ का प्यार है, भाई के प्रति जिम्मेदारी है, प्रेम है, दुश्मनी है, साजिश है और सच्चाई के लिए संघर्ष है। धर्मेंद्र का दीपक अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करता है और यही भावना फिल्म के नाम रखवाला को सार्थक बनाती है। फिल्म के गीतों में जहां उस दौर के मधुर संगीत की झलक मिलती है, वहीं कहानी हमें रिश्तों और जिम्मेदारियों की अहमियत भी याद दिलाती है। तो इसी के साथ आज के इस फिल्मी सफर को यहीं विराम देते हैं। इसी के साथ अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को आज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: 15 जिंदा कारतूस अते 2 वाहन भी जब्त कीते गए ने। कल अमृतसर स्थित काउंटर इंटेलिजेंस CI पुलिस दी विंग ने सरहद पार नशीले पदार्थां दी तस्करी दे खोर मॉड्यूल दे 3 मुख कारकुनां नूं 17 किलोग्राम हिरन समेत गिरफ्तार करके उन्हां दा पर्दाफाश कीता, जदों कि 16 ते 18 सितंबर नूं अमृतसर विच 2 होर कारवाईयां विच 37 किलोग्राम हिरन बरामद कीती गई सी। पुलिस ने 4 मुलजमां नूं वी 1 पिस्तौल अते जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार कीता है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर सनत नूं उन्हां देशां तों साइबर हमलियां ते होर रुकावटां लई तैयार रहना चाहिदा है जो नहीं चाहुंदे कि भारत इस खेतर विच अगे वधे। एक मीडिया संस्था नाल गलबात करदे उन्हां कहा कि भारत नूं संभावी भूसियासी जोखमां बारे सुचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि यह एक समर्थ चिप डिजाइन अते निर्माण करन वाले देश वजों उभर रहा है। बहुत सारिया कंपनियां अते देश इस नूं एक खतरे वजों देख सकते ने।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहे।
0: पहली अक्तूबर तो सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग लिए आधार नाल जुड़िया बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण लाजमी होएगा। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि सिर्फ योग परिवारों ही सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर मिलन। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी योग परिवार को LPG तो वांझा करना नहीं है। बांग्लादेश विच ढाका दे जातराबाड़ी चौराहे ते कई बम धमाके होए ने। एक दिन पहलां स्थानक पुलिस थाणियां दे बाहर भी इसी तरह दे धमाके होए सन। इस ताजा घटना विच एक रिक्शा चालक जख्मी हो गया है। यमन दे हौती लड़ाकियां वल्लों सऊदी अरब नूं निशाना बना के मिजाइल ते ड्रोन हमले करन तों बाद पछमी एशिया विच तनाव वध गया है। वधदे खेतरी तनाव दरमियान अमरीका ने अपने नागरिकां नूं तनाव दे संभावित तौर ते तेजी नाल वधण उड़ाना विच विघन अते अमरीकी हितां नूं निशाना बना के हमले होण संबंधी चेतावनी दिंदिआं पछमी एशिया दी यात्रा ते मुड़ विचार करन दी अपील कीती है। खेडा विच भारत दी ईला वेनिल वाला रिवान ने अज जापान विच आईजी नागोआ एशियाई खेडा विच औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तिआ है। इस तों पहलां भारत ने औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले विच चांदी दा तमगा हासिल कीता। भारत दी औरतां दी हॉकी टीम ने एशियाई खेडां दी शानदार शुरुआत करदिआं अपने पूल बी दे शुरुआती मैच विच उज़्बेकिस्तान नूं 19-0 नाल हराया। भारत दा अगला मैच कल इंडोनेशिया खिलाफ होएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एला वेनिल वाला रिवन विदर्शा के विनोद अते सोनम उत्तम असरकर नूं एशियाई खेडां 2026 विच औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तण ते वधाई दित्ती है। औरतां दे क्रिकेट विच भारत ने जापान दे कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क विच एशियाई खेडां दे दूजे सेमीफाइनल विच बांग्लादेश दे सामने 196 दौड़ां दा टीचा रख्या है। इस तों पहलां भारत ने टॉस जित के पहला बल्लेबाजी करन दा फैसला कीता। शिवाली वर्मा ने अपना पहला सफेद गेंद वाला अंतरराष्ट्रीय सैकड़ा ला के इतिहास रच दिता अते एशियाई खेडां विच सैकड़ा लाउण वाली पहली बल्लेबाज बन गई है। इस दौरान सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स नूं पिछे छड्डदिआं औरतां दे 2020 भी सब तों वध दौड़ा बनाउण वाली खिडारन बन गई है। आखिर च खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम नवी दिल्ली विच चुगिरते ते जलवायु गतिशीलता दे भविख बारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दे समाप्ति सैशन नूं संबोधन करनगे। विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा मुहिम दे हिस्से वजों अज देश भर विच प्रोग्राम कराए जा रहे ने। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अज फाजिलका दी सादिकी सरहद तो पंजाब भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा की शुरुआत कर रहे ने। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:10 ते होएगा। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है, हौसियों ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शिफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस ने अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेस, मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और दीगर शराकत दारों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में 17 मुल्कों के मारूफ जज और अदालती नुमाइंदे भी शरीक हुए। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का अहतमाम किया जा रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत के मुताबिक मुल्क में 1067 मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद किया जा रहा है। इसका मकसद नशा मुक्त वादों, दस्तखत करने की मुहिम, नुक्कड़ नाटक, नारे तहरीर करने और नौजवानों की जेर क्यादत मुबाहसों के जरिए मजकूरा मुहिम का पैगाम सीधे नौजवानों तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के तीसरे मरहले का आगाज कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका की सादिकी सरहद से कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने रियासती बीजेपी के सदर केवल सिंह ढिल्लों और पार्टी के दिगर रहनुमाओं के हमराह आसफ वाला जंग मेमोरियल पर 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रा को सियासी जाविये से नहीं देखा जाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं।
5: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
3: जनाब मेघवाल ने मुनशियात से मुतासिरा कुछ कुंभों के अरकान से मुलाकात भी की और उनके दुख दर्द को सुना। इससे कबल पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने जुमे के रोज सरहदी जिले पठानकोट से यात्रा का आगाज किया था। इसमें सरदस्त पंजाब को दरपेश तीन बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इनमें मुनशियात की बढ़ती हुई लानत, अमन कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी शामिल हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत तेलंगाना में भी कई खसूसी प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय फिजाइया जोधपुर के फिजाई फौज के स्टेशन पर जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ है, दो तरफा फिजाई मशक वीर गार्जियन में हिस्सा ले रही है। ये 14 रोजा मशक मंगल के रोज खत्म हो जाएगी। इसमें दोनों मुल्कों की फिजाई फोर्सेस के दरमियान वसी तर पेशावराना राबतों और कार्रवाई से मुतालिक जदीद तर्ज के मिशन पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसमें भारतीय फिजाइया की तरफ से मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के लड़ाका तैयारे तेजस, SU-30 MKI और राफेल समेत मुख्तलिफ लड़ाका हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं। सीनियर सहाफी पायल मेहता का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 46 साल की थीं। मोहतरमा पायल मेहता मुंबई गई हुई थीं कि अचानक बेचैनी होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीरों अमित शाह, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मुंबई में आज सुबह

0: रे कला चौकी में गणेश उत्सव मंडल के नजदीक पीने के पानी के आरजी स्टॉल में करंट लगने से दो अफराद की मौत हो गई जबकि चार जख्मी हुए। ये वाकया महागणपति उत्सव मंडल में दाखिल होने के रास्ते के नजदीक दत्ताराम लैंडमार्क पर पेश आया। जख्मियों को नजदीक के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है जबकि दीगर तीन की हालत मुस्तहकम है। मगरबी एशिया के खित्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। सऊदी अरब को निशाना बनाकर किए गए यमन के हौसी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों के तनाजुर में अमरीका ने अपने शहरियों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया के खित्ते का सफर करने पर नजरेसानी करें। अमरीका ने महाजाराई के जोर पकड़ने, परवाजों में रुकावट और अमरीकी मफादात को निशाना बनाकर हमलों के ताल्लुक से इंतबाह दिया है। अमरीका के महकमे खारजा ने दुनिया भर में अपने शहरियों को मुस्तैद और चौकस रहने की सलाह दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, मशरकी राजस्थान, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में आज आसमान पर जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और अगले दो दिन के दौरान मौसम साफ रहने की पेशगोई की है। जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारत की एलावेनिल वलारिवन ने इनफरादी तौर पर चांदी का तमगा जीता है। 2025 की आलमी चैंपियनशिप में उन्होंने कांसे का तमगा हासिल किया था। फाइनल में वलारिवन ने 252.4 पॉइंट हासिल किए और इस तरह वो जापान की हिनाता ताइची के मुकाबले दूसरे मुकाम पर रहीं। ताइची ने 253 पॉइंट के साथ सोने का तमगा हासिल किया। इससे कबल खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में भी भारत ने चांदी का तमगा जीता। इस तरह एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने एशियाई खेलों में मुल्क के लिए पहला तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस काबिले सताइश कामयाबी से इन खेलों में भारत के तमगे जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है और मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है। भारत बांग्लादेश को दूसरे सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने बांग्लादेश के सामने 196 रन का निशाना रखा था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिफाली वर्मा ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। वो एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर टी20 मैचों की अपनी पहली सेंचुरी बनाई। हॉकी में आज भारत की खवातीन टीम ने पूल बी के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 19 गोल से करारी शिकस्त देकर एशियाई खेलों में अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। उज्बेकिस्तान की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में जारी वीर गार्जियन दो तरफा सजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है। हौसियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के 2 तमगे हासिल किए हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. President Draupadi Murmu to address valedictory session of International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia as Houthis launch missile and drone attack at Saudi Arabia. Indian shooters signed at Asian Games with two silver medals in Nagoya, Japan.

0: बल्लेबाजों ने दो रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से

0: और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: बिहार में इंपोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर

0: और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि कर्मी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
1: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
0: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
0: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
5: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए शिवा।
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों

0: के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फिर इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी सपोर्ट्स सितंबरो ब्योरे पूरी दुनिया तेजा मने बुझा कनिस मकसद अनि असली कि खेल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल जा कनी गबाल मलाय से हिस्सा गिनुन ताकि रिनी सेहतुरे अनिसो फायदा भी रिनी सेहत ठीक सची अनिसो कार अनुदेश मने बुझा अनि खेलो जरिए जा कनी किस्म मो खिलाड़ी इसे खेलते ने जननी खेलु जा उर अजोन कार से कनिगा नशीली चीज अगर इस्तेमाल थे ना ड्रग्स इस्तेमाल थे ना ताकि रे अवल ओन गुने ना सिकम खिलाड़ियों अनि देज होया जैसे हुर थे बोजा जनु मिशार थे नुश कनिगे गेमु जा के छुन तो जनु आ किस्म ड्रग्स इस्तेमाल थे थे जनु खेलु जो खलविया तो दुमोगो कनिगा जवानी खेलु रे शौक बोन तो रिश खेलु रकबर सचुन तो कनिगा नशावर चीज हो रे दूर सचा से कार्य ताकि थानी कि अनु खेल इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट्स डे मान्योनो सजारू खेलकूदो लाओ फायदे हने असनी जिंदगी जा अनिसो लाई अहमियत हनी खेलो खेल थ्यून तो इंसानो दिमाग ताजा सचों रेसो डिमा जा शंग अचे बेनी असनी सेहत रेसी ठीक सचनी कनु खेलता इंसानी कनु खेलता इंसानी जो सेरे परेशानी बीनुश कनिगा टेंशन जिसरे बी नुशरो खेलू या जिसो दिमाग ताजा सचम कनी जेल सबक रजोन रजोन तो कन इंसानी दिमागो सलाहियत जिसी थोशे नी आई फशबो खेल था इंसानी जिसो डिमो सेहत जिसी जिसरे फायदे लाओ बेना अनि खेलू जा कोई एक से हिस्सा गिनो वार भी नहीं चाहे अमीर बोनो गरीब बोनो बुढ़ एक बोईता खेलो मैदान वजी खेलते बोझा सदे अमीर गरीब फारक बेनुश खेलू जा एक वक्त पाबंदी रे सिटी बोझा खेलते उन तो के थे उन तो खेलू जा एक वक्त वक्त मुकर्रर एनो रदे रे हमेशा वक्त पाबंदी जा बेया एक उकुस नला जे दोस्ताना ताल्लुकात छिरो नो रिसी चा एक कनिगा टीमो जा एक कप्तान एक जिनो एनो से सी रजाओ केयर से अमल थे वो जहाँ आई फरबू रे से रे कनुगा बड़ा अक्सर रजाओ केयर रे अमल थे उन्होंने अधी उजे सी चीबो जहाँ स्कूल जा कॉलेज जा कनिगा मुश्किल वक्त काल तो कनिगा खेलो जा या जिनोर मुश्किल आल तो कनिगा मुकाबलो जिसे या मुकाबले जा मुश्किल आल तो रे से कंट्रोल छोनो जिनो एक जज्बा एनो सी खेल था करे जिनोर इनाम गले जी बोझा तो आई इनाम पशी मुत जी से कोशिश थे ना कि मुसुगा आई फर्स्ट जैसे इनाम हासिल थेम थे तो खेलो आ किस्म जा अ कोई तिला फायदे में कोते अनु दौर जा स्कूल जा तालीम सिनला खेलो ला अहमियत देहनी दानश्वरी से रजी बोझा खेल का एक तालीम हिस्सा बिल खेल तालीम जो अलग न बिल हूरी न बिल स्कूल बाल मुलाय से कोते एक एक स्कूल या नेशनल लेवल जा जैसे मुकाबला थे बोझा इंटरनेशनल हो जा जैसे हिस्सा गिने बोझा सदर उन्होंने कामयाबी ले जी कोत एक मुहिम है जो है खेलो इंडिया थे हर दिशिया ब्याला असनी करगिल एक करगिल इंटरनेशनल मैराथन जैसे यजी गई सद असने बाल मुलाय जा हिस्सा गिने यानी खेलू जा हिस्सा गिने हिस्सा पे अकनी जिस मेरे अकनो डिमर फायदा लाओ बोने हना
1: सजारु मुसु मेजर अजी गस अश दयावत ध्यान सा सोजा नोम निखा तो शायर जनाब अहमद जवान साहब तो रसी तारुफ थोनो जरूरत मुश बेबड़ ले रहे एक ऑल इंडिया रेडियो करगिलो शिनापुर प्रोग्राम पुनरुखुर अहमद जवान साहब बिल तो अहमद जवान साहब जो बेसु मुझ कल खुजोन असनी शिनाबा शबारार तो अहमद जवान साहब अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम जी
1: जवान साहब बे सु बुर्ज में जा तुरे शुक्रिया अदा थे थोन जू कि थो थनो के मती वक्त जो अश वक्त खला तो आनी असुस नला ऑल इंडिया रेडियो करगिल सिना पुनर प्रोग्राम जा में शार बिलुको तो जवान साहब बुर्ज आउलू को खोजन तुराई थोन जो बेसु कि आनी ऑल इंडिया रेडियो सिना पुनर प्रोग्राम में जा थो खुरु या तो अनि करे जो शुरू बिलिक बिल या तो ने तु ते शेर शायरी थोनो थनी शुरुआत थो कोनो थाक बिल कने वो शोक पैदा बिलो तो अनि सो भारार असने प्रोग्राम कुंडे नुकरे
2: बुरुज में जत मुसो असने कुंडे ने का जामालेस

0: और मुझसे सात और आर मालूस कि कल्चरल अधिकारी में या अकल अहमद जवान से मुते जाए गए तो उससे सिकार मुझसे मदद थे मालूस अंसारी साहब आलो असवी साहब आलो साधु पन्नी उमर रजा अमजद साहब अचानक आदे लालचो के मजा रुक लो तब जवान साहब मुझसे गाना आना थे शनिया जो लिखे मुजदा से नजर रख देता खैर लिखो नहीं सबों को लिखे लो लेकिन अमजद साहब से शायद मैं इम्तिहान है गिने लो और कचा रग में कामयाब होते उस दिन कलाम तुम्हारा जो नहीं जोखा नहीं सदमा बिल्कुल नौ से खेलों की जरूरत ही नहीं असली नौजबिल्ला तो मिस्टर मिस्टर कलाम तुग लिखा असलो जी नहीं डायरी जी और सब सगा आले सारो पंजो कादर जाकिर साहब के दादा जो सो जो फैरियस मुशायर उठंग तो रेडियो प्रोग्राम उठाएंगे जो नौ आरियस असो जा तो आडिशन नहीं बिलियो आडिशन जब तुई गा अच्छे तो है ना जो रजामजद साहब का कंपेयर अच्छे तो जाहिद मुख्तार साहब अच्छे तो कादिर जकीर साहब अच्छे तो अनु मोहसिन हुसैन हुसैनी है ना जो जगह तो आए फिर वो असनी प्रोग्राम मेरी का जासिक साथ आई बोलो मोर जहाँ जग और शेर शायरी जी का सुना अदबे ही कार्य होगा क्रम छोने कार्य आज खुदाई सदा जरे असवी साहब थे मी नोम जैसे अंसारी नोम जैसे या मुते का जाहिर असना छपी सागर साहब हनो या हमसाय का काफी बिस्मिल साहब वगैरह चुन बाल हाँ तो आए फिर बुरे ला से कनिजार नोम अमोटन ही जे एन दस्ती तो सस बख्शिश चाहा तो आए फर्स बात को तो मी अरज आहनी ना हो कार्यो का तालीम दिया से शिना अदबे कार्यो है ना चाहे शिने जो से श्लोक लिखानत कहानी लिखानत लतीफा लिखानत है ना जी या गजल ना तो मिली नगमा जो लिखान तो गा है ना सोच अकेले लिखा तो से अब शायर लिखा तो सबसे असलात है लाओ मुझसे एक मोटे कर समझा आंस पोगल हर या तो सोच कराया लगे जने जाया सो कराया लिपा सुधार बोनी ही या जो हुतो बोलो नहीं आंस पोगल आंस पो फटे जा ही जाए ये आंस पो फटे जा सो दे जो जने जाए जुग जाल जने ला जो बड़ा हो बहनों लगा लग दिया ना तो कोशिश चाह हल्का हल्का लोक लोक कर
1: दिया जाए
0: तो शौक हो मनुष्य शौक कैसे जाने आदो को सच जा सच जा अनु गल जाए उन्हें जरूरी आदो को गल तो बास ले असने गोर जो खुशुस संग असने जीब जो पुरे उन्हें बाल मुलाय ले है ना असने जीब जो बास ने चिनो ने असने मुलाय जो खुशुस संग देसो असने बास चिनो ने कोशिश थे ना असने कोटी क्या ने ना जब मेरे शिन ने जमाने का ने है ना सच बास चिनो ना जा है ना उर्दू जो बोलो बाग असने सिने में जो उर्दू अचार ना हाई थे अचार ना है ना बोला से आला लोक लोक खा ला लोक लोक थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी आ है ना
1: बिल्कुल जी
0: भाई भाई दरबार कहे थे अलग छूत बहन लाई छोने जा फास्ट फास्ट फास्ट चीज आओ जोग मोरे गुल भाई है ना से फास्ट होना तो सो दरो सानी दरिन सोसाइटी जो सोस अंग्रेजी था उर्दू था इस्तेमाल है ना सर सेंडी चखने लेकिन गोर आजो आखिर कोई आजो अकिनो गामा आजो अकिनो हेतु आ जा काइन छिया है ना जो प्राय छिया तो असनी बास ने नशे इंशाल्लाह नशोनी बास तो जे बिल गने बिल के जे बास रस्म खत नुशो अशदक जिंदा हने बुढो जो कमाल हने के जे संस्कृत बास सस बिल है ना जो संस्कृत ते लिखार गाने है ना और सेनो जे लिखार नया ने नाम देगा हाथी की और अश उर्दू फारसी या बेंसो पोए तो प्राय ते लिखोनी कोशिश करना
2: जामीन अभी तक आप दसन जापा ऐते शीना प्रोग्राम ये निपिन पुनर मीडियम का द्वाकाशवाणी कर गिलिन मीडियम में 1584 किलोहर्ट्स मीडियम में 684 किलोहर्ट्स एफएम सावा शहर 1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल एफ न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन से पैर के 3 बजे हुआ चाहते हैं सामीन आपसे लेकर शाम के 5 बजे तक हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मीर तकी मीर की शरी रिवायत और खिदमात के हवाले से डॉक्टर रसीद आलम की तहरीर का द फीचर शेर के पर्दे में उसने गम सुनाया का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामिन ने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम इजलास से खिताब करेंगी। नौजवानों में मनुष्यात के बेजा इस्तेमाल के खात्मे के लिए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में जारी वीर गार्जियन दो तरफा फजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है, हौसियों ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शेफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। स्मृति मंथाना खवातीन के T20 में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली

आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनवा रहे हैं मारूफ अदाकारा शकीला की फिल्मों के कुछ नगमे। आज उनका यौम वफात है। आप सुन रहे थे सिमसिम मर्जीना फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा और मुबारक बेगम की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था यार कुरैशी ने। और समझ लीजिए, सुनिए आर पार फिल्म का नगमा गीता दत्त की आवाज में, नगमनिगार मजू सुल्तानपुरी, मौसीकार ओपी नैयर।

सामने सलेक्ट के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आज का प्रोग्राम खराज अकीदत था, उर्दू सर्विस की जानिब से अपने जमाने की मारूफ अदाकारा शकीला के लिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है डॉक्टर सईद आलम की तहरीर का द फीचर शेर के पर्दे में उसने गम सुनाया का दूसरा और आखिरी हिस्सा।

0: वो क्या चीज है आह जिसके लिए,
1: वो क्या चीज है आह जिसके लिए,
0: वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले,
1: उठाकर चले, चले।
0: कोई ना उम्मीदा न करते निगाह, कोई ना उम्मीदा न करते निगाह,
1: कोई ना उम्मीदा न करते निगाह,
0: कोई ना उम्मीदा न करते निगाह।

0: हमसे मुंह भी
1: छुपा कर चले,
0: तो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, कि तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई,
2: जबी सजदा करते ही करते गई,
0: जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम
1: अदा कर चले,
0: हक़े बंदगी हम अदा कर चले, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर,
2: कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर,
0: कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे
1: क्या कर चले,
0: क्या कर चले, जहां में तुम आए थे क्या कर चले।
3: भाई मीर साहब, आज लखनऊ और देहलवी शायरी का फर्क वाजे हो गया। लखनऊ की शायरी वाह की शायरी है और दिल्ली की आह की।
4: वैसे अगर इस वाकये से सर्फ नजर कर लिया जाए तो लखनऊ वालों ने मीर को सराखों पर बिठाया, इन्हें इज्जत बख्शी। अपनी शोख मिजाजी के बावजूद मीर के कलाम पुरसोस की भरपूर पजीराई की, यहां तक कि हजरत खुद कह उठे, शेर पढ़ते फिरते हैं सब मीर के, और लखनऊ क्या सरसब्ज हिंद में ही नहीं कुछ ये रेख्ता है धूम मेरे शेर की सारे दकन के बीच। और साथ साथ ये पेशगोई भी की, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेगी याद ये बातें हमारियां। दुरुस्त है, 100% दुरुस्त।

ऐसा शेर सिर्फ उसी शायर से अदा हो सकता है जो खुद गिरफ्तार इश्क रहा हो और इस मैदान में नाकाम भी। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। जी हां, मीर वो शायर हैं जिसने आप बीती और जग बीती का फर्क मिटा दिया। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। ये निशाने इश्क हैं जाते नहीं, दाग छाती के अबस धोता है क्या। और यही वजह है कि मीर की मकबूलियत ता कयामत रहेगी, ख्वाह उर्दू पर कितना ही जमाना क्यों ना गुजर जाए, या ये कितने ही गालिब, कितने ही इकबाल, कितने ही फैज और कितने ही फराज क्यों ना पैदा कर ले। जाने क नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, जाने क नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, मीर की मकबूलियत हमसरी नहीं हमासरी है। मुलाहिज़ा हो।

मीर कमोबेश 28 बरस लखनऊ में रहे मगर फकीराना, उसी लखनऊ में जो उन दिनों ऐशो इशरत का गहवारा था। लखलट नवाब आसिफुद्दौला ने 200 रुपया महाना मुकर्रर किया था मगर बात बात पर नवाब सिरूट जाते और दरबार से अक्सरहा गैर हाजिर ही रहते, उमूमन गोशानशीन रहते। और कुछ मशगला नहीं है हमें, गाहो बेगाह गजल सराई है। अपने घर के किसी तारीख कोने में बैठे गुलो बुलबुल पर शेर कहते मगर खिड़की के पट न खोलते कि देख लेते कि उस पार एक बाग भी है। आखिर कोई सी बेकसी इसी बेचारगी के आलम में 20 सितंबर सन 1810 में लखनऊ में वफात पाई। कल जाकर हमने मीर के दर पर सुना।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आप सुन रहे थे, ये नगमा फिल्म थी हम तुम्हारे हैं सनम। और लीजिए सामने सुनिए कंचन, मनहर और आनंद की आवाजों में इंदिवर का लिखाई गीत, जिसे मौसी की सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म है कुर्बानी।

0: până ața, sau în zași mazur bazințuc, natpa bazințuc, sau nis ngata ngati jinguni, țasuni, ngata țam și yonke yong mat pinna, don kule kule a cam ce înțung zințuc, cea, sarcari lutunea, tot suc și hararat ce iot înțu, înața, ki țam și geri se ang naiot na, don gangma fiind se tangcea la suspola, baki la suspola yang la zoc se ceang, mitangcea. Și ana două cea na, kule kule a ngata nga realize song sin chuk scientist sa realize song sin chuk sakyat na nga mo lak thup tang se las ba khani miun la malap taxpa song sin chuk ki sarkari lut be tahasha nga te tajuk pe ka test se test un maba tang chas pos ba se sound nga ti kafi nat pa song se yung kyo nga ta bilkul kam song sin chuk chana ndi ka na pule pule a scientist suni jang gor fikir ba na scientist un la pata song suk ki nga te be tahasha sarkari lutun sarkari smanun ngates ngati laksusun lakol chaspos base sound kule kule nat pasun se sam shik sound yang ngata gyalba lasbe janwar rio jandar chi shot gaung ngati mig na thong metang ngate string je thong gaung ngates microscope yang ta se mene thong ang metang uduni abade bilkul kam chachaspos base ngata sam shi yong khe yong mat na a se pana 20 sal yares ngatang basang 80-90 sali buzrugun la tiana ena sa duze rendu ki snal la brega nga khali yung malu chana odun chote daksam brega nga bresum yajbi mene yung mendu kule kule nat pa song zin chuk sarkari lut be tahasha kal kolchas pos basi ngati saun kule kule chote song zin chuk tana dek na chi song zin chuk zibana daksam scientist un la dia realize song zin chuk ki di sarkari lut un sarkari man bilkul ode chemical fertilizer po mana mangmo kolchas pos basi chemical man un ngati laksus un la mana mangmo kolchas pos basi saun kule kule nat pa basi chuk ni saun kule kule nat pa bana scientist un la yang realize song zin chuk ki ngates dun yang revive be fila yang dun uk chuk chuk yang zok kyung chus pe fila kuma yang shet tang chup pe fila ngate chibok sambana ngati atapun is gasuk shik snal la farming bat pin na natural tarike ka udun lang uk juk shuk pin ngata nga stab bar go shatu yang las bar go shatu ta ki yung mitus pe anu ngate ngati future un la ngati future generation un la ngate di jing un yakmek basi jak se chok tasa
1: dosa ban मतलब गाते केमिकल फ्री एरिज जैसे जो गाते बिल्कुल करते सरकारी लूज जाते आम पूरी पने गाते जैसे सरकारी लूज जो चाहना दिया नो दरे कुलिया गाते लोग चाहें हाँ ये इंटरेस्ट लाज बने तो की नेचर फार्मिंग तरफ गाते चेंज हो चाहना दिया नो लाइफस्टाइल या डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग वेदन गाते अलग अलग फसल तांग से हाँ या ट्रेडिशनल तरीका न्यूज बस है गचुक चिया न्यूज मदद बनी हाँ दी गति जिंग पो यंग लोग से आता पुए दे कुए दे गत पिका लुजो
0: बिल्कुल बिल्कुल मान खाचे यारे यंग सवाल चिते से ना साहब चाना दी नेचुरल फार्मिंग पोखरा है चुंगा थी आता पोन इस गचुक शिका सागेत पत पिन्ना उदों लयंग रिवाय बचा दों लयंग जक्ची उक्स जुक शुचा ताकि गति साउन यंग शेत पो या साउन ही ताकत पो यंग लोग से यंग चाना नेचुरल फार्मिंग ही यार ना पिलर जीव है इंदु कहना साहब देंग इंसुक जीवामृत गन जीवामृत जीवामृत जरे इंसुक छुई लुत पोचो से गन जीवामृत पो इंसुक जाशिक नतेस शिलांग उल्लायंग क्याला जोस्ता चिगा गचु उग जुक शु से नतेस शिलांग
1: नतेस
0: बिल्कुल शिलांग उनी ताकत पो बढ़ाई बसे नतेस नतेस जिंग उनी का गचुक शिगा लेप चुगे तंग दो इंसुक सुंपाव जर्चे नियारंग मल्चिंग मल्च दां दरिंग नती दर मल्च जरबाने सिर्फ नखपो प्लास्टिक पो तीन चाव जेंदो एनाथ साहब मल्च पो नखपो प्लास्टिक पो सा तीन चाव मेन की मल्च पो गाती जिंग पो नंगा माजोक जरिंदो यारा जरना चितों शिक्स कोने जक पना चाम शिब बात यो तना दोन दें जुक सोल्यूशन सुख निस्पा गाती लद्दाख सुख जगाओ निका मल्चिंग मना मना इम्पोर्टेंस चे दुख जरबाना नती आबो हवा खुश पियो चस्पोज बसे चाम शिक नमी यो तना दोन योस्पे योस्पे सारे चाचस्पोज बसे दियं चाम शिक नती साउन यंग गैल्बास्ट्रीन यो तना दोनी आबादी कुले कुले काम छाचिन सुख चाना दोनी आबादी मेंटेन जक चुप पे फिला रियलबा जक चुप पे फिला दी से अनुक बात पो क्यारिक लुशास पो मन खाचे गिन सुख दे फिला मल्च पो मन जरूरी गिन सुख दोना बीच अमृत जर्चिन यारा जरना बीच अमृत जरबना बीच जर इन सुख यारा सोन पो जर अमृत जरबना दोन लस मन चिकिन सुख यारा दो नते लोकली तरीके का नते दिस सोनीस मन पोचो चाहे रहा जर ना सीड ट्रीटमेंट जर बेटा साइंस यंग सीड ट्रीटमेंट चोस तंग जैसे कि गाता गाहे गाहे सोन पो तब से ना सोन पो ना मन मामिक तास पा मगर रेडी पे मेरे मामा हूँ कासा कासा दोन लाख

0: कुबार ना दियो या कभी कुबार बाल वाल छक्सियो में नो एरेज सानर या ना चना उदोन ला ट्रीटमेंट में फिला बीच अमृत जेरिन दुजो दोन ला गतिस लोकली तरीके का गतिस नती तरीके का ट्रीटमेंट वसे रिमो बसे चो से नि दोन गतिस इस्तेमाल बनर गलबा यों चिन सुक यों के और गलबा छचिन सुक ता दी जरूरत पो यंग नेचुरल फार्मिंग की जरूरत पो चीसों से जुग बना यंग एरेस मामूल सा एनाथ साहब की लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन पो जरे लाइफ स्टॉक पो भलंग पो गतंग नेचुरल फार्मिंग यंग मन खाक चकिन मगर बालांग पॉपुलेशन पोंगा कम युद्ध नंग डिक्चिन स्नल्ला अतापुनी तुस्पेंग नोर बालांग ख्यारिक जकचास पोस बसे गति जिंगुनी का लोगंग हर जिंग नंगरे लुत या छक्से लुत या नोरी लुत गंगमा चिचिक बसे गति जिंग भी रह गई उतना गंगमा गेते ने चुके छना दक्षम तुस्पेंग यंगा हार्डली मन मंगमो जखन पोस बलंग जगत नोर चू जगत दोन इस यंग जिंग का तो अगर चिची का ओल चिंग जिंग हर साल पॉसिबल मछा इंसुक मायन मा इंसुक की हर साल दिया नोर बलांगे बिंखा नी लुत पोंगा तेस गति जिंग गंगमा लिप चुक चस्पुआ माना कावर बा मायन मा इंसुक छाना नेचुरल फार्मिंग तरीके का मन समय एनाथ साहब नेचुरल फार्मिंग पे हमारे छुई लुत पोचो से दिया छुई लुत पो ताकत पो जाशिक स्केते ना यारे जिंग उन लतंगना लुखोर यंग कम अस कम यारी लगा जिंग का तो जिंग ने सास निस्का तंग से और दून रुग्या दियो ना लोखोर यंग यारे सिर्पा सुम जबीरे गया रहा दिया छुई लुत पो करंग पूरा रिपीट चेंदुक छाना सिर्पा सुम जबी का तो दिया रिपीट छाना नतंग पुले पुले जिंग उन्हीं था नतंग नत पो यंग लोक से यंग चेंदुक
1: तो डॉक्टर साहब माता जैसे की 2025-26 में 20 लाख पॉपुलेशन
0: बिल्कुल
1: हिंदुस्तान है जी 20 लाख हेक्टर जो सॉरी 20 लाख हेक्टर या दो ना 10 लाख हेक्टर 20 लाख फार्मर कनेक्ट कर अच्छा ना गचुक चिया दी जो ना मैकेनिज्म बदल बजू
0: बिल्कुल बिल्कुल एनआस साहब की 2024 स्टार्ट सो अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से छाने दे 2024 जना 2481 करोड़ सैंक्शन सो मिन एनआस साहब दे दिन दबाजियोत की फोकस बाजियोत की हमें 18,000 क्लस्टर विलेज एडॉप्ट बचे दिया पूरा ऑल ओवर इंडिया 18,000 क्लस्टर विलेज एडॉप्ट बचा दो ना कम अज कम 10 लाख हेक्टेयर अंडर नेचुरल फार्मिंग 2026 एंडिंग सर की कवर चिक सपी विलेज रे दो अंडर नेचुरल फार्मिंग यंग अच्छा एक साल पूरा कवर बसिन सर थ्रू इन कोलैबोरेशन गती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यमो चाना अस्किया यंग विलेज एडॉप्ट बसे अस्की ना फला यंग 5 दिन ट्रेनिंग चियोत नेचुरल फार्मिंग दे यंग अच्छा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ला बुलाई बात कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन या कृषि सखी जचिन दोन ला ट्रेन बस से फल्ला दोन इस गाँव यंग रंग रंग ही डोर स्टैबिक है नंग नंग आसों से कुआ जाश अवेयरनेस ताचिन सुख छाना देखना खुंतेस जगह चिका पार्ट खजी का प्लिक चोस पा देखना कुआ सब चिन सुख की कैसे बनाना है नेचुरल फार्मिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे जीवामृत योत बीज अमृत योत गन जीवामृत योत छाना ओदोन ला गचू कर देव बस चोचिन जरे पूरा गाँव या सोसे को तंग पा गाँव पा उस नतंग बसंग ज्यादा भरोसा गाँव पा कुंता ना कुंती का चेंदो छाना दोन इस कुंते कुंती जगह नहीं कर देमो बस चोस पा दोन नहीं कर देमो बसे अमल बाना दोन ललता से कुंते गाँव पाओ निसंग यंग दिन दबिंदु छाना दी साल यंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज दक्षम गाचा अस्की ना फल्ला नेक्स्ट कमिंग मंडे ना फल्ला डेट तंग जो की यंग 5 दिन अंडर नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग चियो दे गाँव बिकॉज एडॉप्ट बस इंसुगाती देखा ललुंग जरबे साहब ललुंग यंग अंडर नेचुरल फार्मिंग एडॉप्ट बस इंसुक छाना देखा ना कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन दोना कृषि साखी को देना शौचिन छाना दोन लगाचा देखा ना ट्रेन बसे कौन ट्रेन बसे नर देव बसे गा इनग्रीडियंट अंडर नेचुरल फार्मिंग दोन गाँव मार देव बसे कौन सबसे ना देखा ना सो से गाँव यंग कौन फर्दर दियो यंग देव बसे गाँव पालना सब चाका सर
1: मुझे नजर साहब था नतंग लद्दाख या नतंग करगिल से नजू सीजन वन नतंग सुनते हो जो
0: बिल्कुल
1: नतंग फसल टाइम पर जना 6 महीना मैं यूल खाची है ना फसल चीजी तो वैसे यूल खाची है ना फसल नहीं तो वैसे
0: कासा कासा
1: चाहना दी शॉर्ट पीरियड पे है ना या दी नेचुरल फार्मिंग तरीका संगति मिमांग सुनला फायदा चाची ना क्लाइमेटिक कंडीशंस चैलेंज लगाते फाइट बा छुई कमी हो चला लगाता फाइट बा दोना sa khuriyan udare ngati kami songso natural ngati khoi

करना। बच्चा बोला, आंटी पहले मुझे काम करने दो फिर खाना दे देना। मालिकन ने कहा, ठीक है। बच्चा अपने काम पर लग गया और एक घंटे बाद बोला, आंटी जी देखिए सफाई अच्छी तरह से हुई है या नहीं। मालिकन, वाह तुमने बहुत अच्छी सफाई की है, गमले भी अच्छी तरह से रख दी गई है, बैठो मैं खाना लाती हूँ। लड़के ने जेब से प्लास्टिक की थैली निकाली और खाना इसमें रखने लगा। मालिकन बोली, भूखे भूखे काम तो कर लिया, भूख बहुत लगी होगी, अब यहाँ बैठकर खाना खा लो, जरूरत पड़ी और भी दूंगी। बच्चा बोला, नहीं आंटी मेरी अम्मी बीमार हैं, घर पर अकेली हैं, सरकारी अस्पताल से दवाई ले आई है लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दवाई खाली पेट न देना, ये खाना मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। मालिकन रो पड़ी और अपने हाथों से इस मासूम बच्चे को दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया, फिर इस बच्चे की बीमार माँ के लिए रोटियां बनाए और इस लड़के के साथ उसके घर जाकर माँ को रोटियां दिए और कहने लगी, बहन आप बहुत अमीर है, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है हम अपने बच्चों को देने के काबिल नहीं हैं। खुदा ऐसे बच्चे उनको देता है जो बहुत खुश नसीब होते हैं। तो सामिन, इस तरह माँ की अच्छी तरबियत से बच्चा काबिल और जहीन बनता है, इसलिए कहते हैं कि जन्नत माँ की कदमों तले है। जरा सोचिए, क्या जन्नत को यूं ही माँ की कदमों तले डाल दिया गया? नहीं, बल्कि जितना बड़ा ओहदा दीन इस्लाम से एक औरत को मिला है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, बच्चा यहीं से अच्छे और बुरे की तमीज सीखता है। माँ बाअमल और बाकिरदार है तो बच्चे की सीरत व किरदार पर भी इसी का असर होगा। कहते हैं माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियतगाह होती है, इसी तरबियत पर बच्चे की शख्सियत पर परवान चढ़ती है। अखलाक की जो तरबियत माँ की गोद में होती है, इसी तरबियत पर बच्चे की सीरत के बनने या बिगड़ने का इन्हिसार होता है। औलाद की अच्छी तरबियत इस कदर अहम है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल आयान को दोजख की आग से बचाओ। लिहाजा वालिदैन का फर्ज है कि बच्चों के सामने हुस्न अखलाक का नमूना पेश करें ताकि इनकी औलाद अमदा अखलाक की हामिल हो। औलाद की अच्छी तरबियत का फरीजा न सिर्फ इस्लाम आयद करता है बल्कि मुल्क व मिल्लत की तरफ से भी इस बात का तकाजा किया जाता है। इसमें पलने बढ़ने वाले शहरी अपने वतन का रोशन मुस्तकबिल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत जिस अंदाज में फरमाई वो रहती दुनिया तक के लिए नमूना कामिल है। इनकी तर्ज कलाम, हुस्न अखलाक, आदाब गुफ्तगु और खुशू व खुजू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आती है। औलाद का वालिदैन पर हक है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक औलाद की दीनी और मरवजा तालीम का इंतजाम करें, इसे इल्म और इंसानियत के जेवर से आरास्ता करें, इसकी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं और इसकी दिलचस्पियों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने में इसकी मदद करें, इसे साइंस व टेक्नोलॉजी के उलूम से आरास्ता करें। इसे न सिर्फ वो माशरे का एक मजबूत फर्द बन के उठेगा बल्कि इसके लिए हुसूल माश में भी आसानियां पैदा होगी और यही औलाद बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनेगा। वालिदैन का फर्ज यह भी है कि वो अपने तमाम बच्चों से यकसा और अदल व इंसाफ वाला सलूक अदा करें। इस्लाम में लड़के लड़की या छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है, लिहाजा औलाद में तरजीही सलूक रखना या किसी को कोई चीज दे देना और दूसरों को इससे महरूम रखना जायज नहीं बल्कि सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। अगर वालिदैन अपनी औलाद को पूरे इत्मीनान और बेहतरीन सीरत व किरदार का हामिल देखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गोद से बेहतरीन दरसगाह फराहम करनी होगी और एक अच्छी माँ का रोल अदा करनी होगी। एक माँ के रूप में खातून के लिए उतना ही कहना काफी है कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान को पैदा करने वाली भी एक खातून ही होती है। लिहाजा माँ के रूप में बहसियत खातून की समाज के तई एक अहम जरूरी है। खातून चाहे तो समाज की शक्ल बदल सकती है, वो आने वाले नस्ल को अच्छी तरबियत देकर एक नई सदी का आगाज करा सकती है क्योंकि माँ ही बच्चे की पहली उस्ताद होती है। वो अपने बच्चे को रहम ही से अच्छी तरबियत देना

नेतृत्व नर्दुन मलसौनी का राष्ट्रीय संकल्प समारोह इगल बेनो तीन दी तोनपु नशे के नर शख्स छे छतुन दस्खत बे मुहिम नुकट नाटक नाराज ब्री दोनों नौजवानों ने लमस्तन है नुक्श पशुपति स्त्रोली का दी मुहिम बेफ्रेन उन छोक्षी का शर्बना चुंगन सपाल है चुपचाव ने ध्यान हिंगम बो खबर उन संग

दुख पिन्नया से कई बुबलाई खुरे कफन।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित

0: कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबायनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबायनिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times stresses the urgent need for strong climate action to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. She called for stronger cooperation among stakeholders at the local, regional and global levels to address the challenges posed by climate change.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said farm ponds can help local communities in water-stressed regions. On the first day of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering. The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force are conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur to bolster defense collaboration. The four-day exercise, which will conclude on Tuesday, involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI and Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. Japanese Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew a Tejas jet with a pilot, while Air Chief Marshal A.P. Singh flew solo on the Tejas jet as part of their sorties under the Indo-Japan bilateral air exercise. Talking to media in Jodhpur during an ongoing bilateral air exercise,

0: ta main po activity na exercise na physical activity ma na ma cha jua
1: ona
0: through sports se through ta ki kuch khelne mein misal na ju thase ke kho ek to activity so dusra kuch khelne mein kho thase
1: nazar ga chet ka sa
0: cha ode din de ka ju jaksen ju ju har saal 20 सितंबर जरे दिन का और स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट करने दोनों कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट जो है या कोई भी टैलेंटेड कोई बंदा है तो उसको आगे लेने का मौका मिल जाता है जो आगे खैर भी मौका दुल्लायंग जैसे इतना यूनिवर्सिटी में चले गए यूनिवर्सिटी के बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से फिर आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल सपा को मौका थपचिन जो है जी थ्रू दूसरा खो अपनी फिजिकली मेंटली खो फिट लुस्फिया जी प्रोग्राम पो हर साल चौथ पर जुड़ा सा
1: बाक्षे जुड़ा चुम से जैसे मन अर्थ में मोल ने पिंक किंग अतिरगु नन में चंद में जग पे मिंगना स्पोर्ट्स शिंग अता मन अच्छा साइन कन चेज मन अदरे अता गवर्नमेंट संग या अती गति हिंदुस्तान गवर्नमेंट इस अतिरगु तुन लफे से संग शेष लिबे फ्रून ला di shes poni ambo ambo sports ka ngata kheli ka mana ta wajama na mamik ta unyutin haju chana yarang zirna is a director sports juk sin mana ju ngati university of ladakh anuk ngati university of ladakh sang naning e lo ne ngati tana ka to ngati kargilo ya north zuni haju university level ngata scenic kargilo organize bakhan inju chana ga chok so scenic ngati na organize som inju ya ade chok si scenic ngati yulu ne no north zuni level ka bacha chana cham si phantok chan chine chi phanke chan chi chatong ju
0: kasa ju फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जी ऑल इंडिया नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज भेज मचा ऑर्गेनाइज बाय फिया यूनिवर्सिटी थोबिन जो है छाना करगिल मती सेंटर इन करगिल थोबिन छाना पूरा लद्दाख थोप से जो है छाना करगिल डिस्ट्रिक्ट पो देने बस खोनी से इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज मची वहां से पूरा जी यूनिवर्सिटी गेम और वहां से कंट्रोल छा जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन ए आई यू बचिन जो है दे प्रोग्राम पो दिचिक ननिंग सर अक्टूबर से ऑल इंडिया लेवल का अच्छा नॉर्थ जोन में जितने भी यूनिवर्सिटीज जैसे हमारे हिमाचल से मैं नजू जम्मू ना या चंडीगढ़ ना जिका श्रीनगर जम्मू मतलब हर जगह से यहाँ पे 45 टीम है जो है वुमेन से कबड्डी इन जो है ऑल इंडिया या नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी तो बहुत से मतलब 45 टीम चीज यहाँ पे यूस पे जो है छन इससे एक फायदा हमारे बच्चों को सगा जो है फायदा एक इंट्रेक्शन एक अलग अलग टाइप अलग अलग लोगों के साथ एक इंट्रेक्शन का उनको मौका मिला किस टाइप का प्लेयर से वो लोग होता है कैसे खेलते हैं मैं नजू एक अच्छा एक एक्सपीरियंस एक एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिला किस तरह का नेशनल लेवल का प्लेयर कैसा होता है कैसा मैं नजू छाने बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया बाद में इसमें फाइनल में हमारे दो टीम यहाँ से एलपीयू लेविन जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से ही हुआ और दूसरा एक यूनिवर्सिटी पंजाब से ही हुआ था सर तो बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर यहाँ मिला कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कैसे होता है कैसे अलग सा टीम के साथ अलग से लोगों के साथ मिलने का इंट्रेक्शन होने का मौका मिल जाता तो बहुत से फायदा आती फ्रुनला का सर सोमिन माजू का सर
1: बख्शी विराट साहब तादी तो से सिनन नति करके लो ऑर्गेनाइज शाना ये यंती यूनिवर्सिटी लेवल का गति फ्रुन ला शेसिल बे फ्रुन दी तो ला स्पोर्ट्स एंड व्हाट इज एंगेज जर्सी गैलर गैलर फील्ड दुनिया नु तंचास बसे या दी स्पोर्ट्स प्लस बसे या चाम से गतिव फ्रून ला आगे प्लेटफॉर्म चिल्दान मजूक हों जॉब अपॉर्चुनिटीज जरना अलग अलग डिपार्टमेंट चंगता फील यानुक छा छुपे मीना यार सैनी लेन पुखुरी यानुक रियला बसे खो छो मना गता या इंटरनेशनल लेवल कर सेखानी या सैनिक यानी या गता प्लेयर्स तैयार भी मीना दी प्लेटफॉर्म उन चाम से खासा न खाक छिंजू
0: कैसा जो ता जना जर स्पर दी हम फायदे जरना मा का फायदा जो है गति स्पोर्ट्स से मार गति स्पोर्ट्स इस नाम बेसिक ही करना जिस ना गति डिस्ट्रिक्ट चीज से जा डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेप स्टेप छचिन जो है इसके बाद स्टेट लेवल से जा स्टेट लेवल के बाद फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल तो एक प्रोसेस के साथ छचिन तने दो फ्रून ला मौका जिस ना डिस्ट्रिक्ट खुरी का आते मौका ताम जो है डिस्ट्रिक्ट से देखा ना खोलने परफॉर्मेंस गैला ना फिर आगे जाके उसको स्टेट खेलने का उनका मौका दे देता है उनको सिलेक्शन किया जाता है जो है देर यम ना खो स्टेट या अच्छा एक परफॉर्मेंस किया तो फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी या आगे जाके इंटरनेशनल लेवल फिर स्टेट लेवल फिर स्टेट के बाद नेशनल लेवल नेशनल के बाद खो इंटरनेशनल लिफिया इस तरह एक स्टेप वाइज खोलना मौका छा जो है ता दोस्त से ना जो उनको जो सर्टिफिकेट्स या मेडल्स जो भी मिल जाता है जो ये जॉब यहाँ बताना दरे कोच यो मत जो है हर जगह कोच का होता है उसमें वो कोच के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं जो इंस्ट्रक्टर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वो बन सकता है तो आगे जाके जैसे सर जॉब है जैसे स्पोर्ट्स कोटा जरे दरे अलग सा आती यूटी एडमिनिस्ट्रेशन 4% स्पोर्ट्स कोटा को दिया है जॉब में रिजर्वेशन दिया है तो जो अच्छा एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल प्लेयर चाहिए उतना एक गोल्ड

0: अगर है तो उनको वो फायदा हो जाता है कि
1: बेशक
0: 4% जॉब रिजर्वेशन उनको
1: मिल जाता
0: दिया,
1: है।
0: अभी रिसेंटली ऑर्डर आया हुआ है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बहुत से फायदा हो जाता है। दो बगैर को एज ए कोच बनना चाहता है तो इसी सर्टिफिकेट के थ्रू वो एक नेशनल लेवल के, जैसे हमारे पटियाला में है जहाँ जो स्पोर्ट्स कोच का इंडिया के जो टॉप कोच वहीं से निकाल के आ जाते हैं, और एक कोच ट्रेनिंग पोता हुआ खुआन जो है ताकि
1: कैसा
0: आगे जाके उसमें हर यूनिवर्सिटीज कॉलेज के लिए भी
1: उन्होंने
0: जा सकता है। दूसरा आती जो बाकी एडमिशन के लिए, जैसे बड़े बड़े पीजी एडमिशन है जो हाँ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, तो स्पोर्ट्स कोटे से उनको एडमिशन अच्छा, अगर उसने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल से उतना का तो खुआ दया संग कोटा हो चुन जो अच्छा ना रिजर्वेशन हो चुन, रेलवे रिजर्वेशन रेलवे जॉब में इनका बड़ा अच्छा एक रिजर्वेशन स्पोर्ट्स प्लेयर्स को रहता है। स्पोर्ट्स कोटा खुना अलग भी चुन जो हर जगह अरे
1: कैसा कैसा
0: चाहे रेलवे चाहे इंडियन आर्मी, और तो स्पोर्ट्स कोटे से भी एक पोस्ट खोलना थप चुन मजा
1: बिल्कुल
0: सर।
1: बिल्कुल माक्षा जो डॉक्टर मुस्तफा समा दे मोल पिंकी नाती फ्रून सने लुंग पे नु कोडियाला बस दुन लयो ना का तो खों दे नाती यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतर ना 4% रिजर्वेशन तो गता सने अनु ने यों खानी मिमांग सुन ला ता जा सोचिन जे खान पो नाते मिंग ना फगर स्पेरिन खान यंग गा मिमांग शिक गा रुचिक गा जवान चिक गा ता दि स्पोर्ट्स लेन पे गला बस खोस या जिस चेन्यू अगर चेन्यू ना का तोर देमो जोस्ता चिका या गोल्ड मेडलिस्ट ना या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल का तंग प्लेयर चिकल दाने ngati khitela da fese sanga tirge se kargi le ming phi minga tas rdi ama jak cha bakshi jura sap tyarang den as a director sports university and ngata juk sin mana ki university level ka ngati phun la destiny u cham chik chasa inju ya chi anga ta padai ne yam bo bo sports pun yam bo jak sin ju
0: जो चाहे जो ना आतिफ फुल्ला जो जैसे क्लास हैं स्पोर्ट्स पर ज्यादा जरूरत है, आती क्लास हैं जो मिसाल सुबह से लेकर जैसे यूनिवर्सिटी फुलने का काफी लोड हो जो है
1: माफी जो
0: सुबह से मतलब 9:30 से उनका क्लास चलता है 5:30 तक, इस बीच में उनको एक रिफ्रेशमेंट शिक्षा चिन्ह जो है स्पोर्ट्स से चुपचाप खोलना, खेल से चुपचाप ब्रेक रहता सबसे और री एक्टिव छ चुकी रिफ्रेश छ चुकी है जी अच्छे से एक्टिविटी बना ताकि बीच में दूसरे क्लास में वो एक्टिवली और पार्टिसिपेट कर पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक तो दो इंच दूसरा दयान दिन नशा मुक्त भारत नाती अभियान डुलंद जो ऐसे जब वो फ्री होता है तो गलत काम में ना जाए, जैसे आजकल मोबाइल की वजह से बहुत एडिक्ट हो चुका है बच्चों में मैं जो, तो ऐसे चीजों से बचने के लिए इसमें हम इन्वॉल्व रखते हैं उनको स्पोर्ट्स में खेल में, उनको एक एक्सपेक्टेशन करते हैं उनको इनाम दिया जाता है ताकि एक शौक उनमें करते हैं ताकि वो जीत पाए और वो मेडल में ले पाए, उसमें उनका शौक के लिए ये हमारे शेड्यूल में जैसे हमारा टाइम टेबल होता है तो स्पोर्ट्स का हम उनको दिन में रखते हैं सर। यही हमारा मकसद है कि उसको गलत कामों से रोकना और आगे जाके आगे खेल के स्टेट लेवल का वो प्लेयर बन पाए
1: कैसा बिल्कुल बख्शी जो मुस्ता सप्ताह आते से लेकिन दो टी फलूस बीत की रंग रियला जोस्ता चिकर तस्पोर्ट की दी स्पोर्ट्स पु ना तो जोस्ता चिकर से अर्गोस पे दस्तास पु गति गार गिर चिकिस गा जवान चिकिस गा बमो बुसा चिकिस या ना स्पोर्ट्स लेने यों से रियला जोस्ता चिकर खुरी फ्यूचर चोक सामना का तो गा तो गेम चिक गा तो खेल चिक उस इंतखाब बार गोस पे बेसिक या नुक गा गा स्पिरा नहीं खास ना जा पाओ खाक्षी शाजू स्पोर्ट्स लेने आनु गतिस अगर का तो कुछ फ्यूचर तो सामना का तो खुरी स्पोर्ट्स लेने जैसे कि क्रिकेट गतिस मिसाल लेता हूं ना क्रिकेट लेन पर खुश अगर का तो माइंड एंड खुरे क्रिकेट यानु खुश आगे शोक सामना का तो बेसिक यानु खुश गतो स्पेरा गिरिस नगा जा पर उशिन
0: खा जूता मेन पर जो खा प्रैक्टिस ना ट्रेनिंग पर जरूरी जो है ट्रेनिंग पर जमाना आते से 2 महीना ट्रेनिंग था उसमें बराबर सालों साल ट्रेनिंग छोड़ के बेसिक ट्रेनिंग
1: छोड़
0: के बेसिक ट्रेनिंग था उसे एकेडमी याद इन दिसांग
1: ज्वाइन
0: बसे ठीक बसे ट्रेनिंग था उसे ट्रेनिंग के बाद खोज जिससे आती यूटी लेवल का ट्रायल छचिन जो है ट्रायल में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के छदी के स्टेट ट्रायल छदी ट्रायल ने अंको पार्टिसिपेट बस दे के नखो स्टेट लेवल का स्टेट लेवल की टीम अंको ले भी मौका
1: नो नो नो बिल्कुल
0: देर या नखो स्टेट लेवल की टीम स्टेट टीम पे से सर या ने फिर जाके नेशनल अंडर 19 में जैसे रणजी ट्रॉफी से या ऐसे चीजों के लिए वो लोग आगे एलिजिबल, अगर स्टेट से अच्छा खेल के बाद फिर नेशनल लेवल का ट्रायल होता है तो उसमें को ट्रायल में अगर अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया तो फिर अपने आगे बड़े टीम में उसको मौका मिल जाए। तो एक मतलब मेन पोजिशन एक स्टेप स्टेप वाइज डिस्ट्रिक्ट से लेके फिर स्टेट से लेके नेशनल फिर नेशनल से लेके इंटरनेशनल प्लेयर वो बन जाते हैं। तो स्टेप वाइज को खुली प्रैक्टिस को ऐसे सिलेक्शन कमिटी हो चुन जो है चाहे बॉलिंग इन चाहे बैट्समैन जैसे क्रिकेट में ना उसका ट्रायल लिया जाता है देखा जाता है तो इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद फिर वो आगे जाके वो खेल सकता है।
1: बिल्कुल बख्शे जो डॉक्टर मुर्तजा साहब तनानी लुई जिक्र बना जो कि नॉर्थ यूनिवर्सिटी लेवल का

0: दिस उस गेम ने असम प्रमोट पर आगे जाके आगे मौका मिल जाए यहाँ थी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: स्टेट नेशनल इंटरनेशनल तक जाने के लिए।
1: बिल्कुल जी बख्श जी डॉक्टर मुर्तजा साहब तारी के न्यास पर चिंग आते फलुक बेट की गवर्नमेंट भी इंडिया से खास कर दी स्पोर्ट्स सी इट्स तेने लोग पे लोग आती फ्रून लड़ियाला दोस्ते का शेष सा भी मिंगना खेलो इंडिया स्कीम इन नाउ जो गतिर के सिर करगी लिया गचुक एकेडमी रही गचुक लस रिक नती इट्स तेनो इनखा नहीं दी फ्रून ला तंग मचाद की अंकों का दी चौकसी एकेडमी रिक फेसे तालुक से योजू
0: कैसा जो दे खेलो इंडिया अंडर से जो अति ले स्टेडियम समझ आर्चरी डुलेन
1: कैसा कैसा
0: फुटबॉल खेलो इंडिया अंडर या आर्चरी फुटबॉल ले डुलेन यहाँ पे हमारे खेलो इंडिया जिका टेकंडो बॉक्सिंग या दोना ये वॉलीबॉल का भी है तो कुछ गेम्स जो है हमारे सारे गेम्स अभी तक फिलहाल उनका कोचेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो है छाना आता मेन बना जैसे बॉक्सिंग है यंग कोच जरूरत टेकंडो बहुत से गेम्स है आर्चरी का और जरूरत है मैंने आर्चरी बहुत हर जगह आज खेलते हैं एक भी कोच नहीं है तो मैंने जो जैसे उस गेम जैसे विंटर गेम आइस हॉकी का हमारे पास मिसाल आता जो खास कोच इंस्ट्रक्टर छाना जरूरत दोनों की दे गेम आगे छाउन छेन जैसे आइस हॉकी आगे छेन या जैसे आर्चरी ठीक ठाक आगे तो इसमें भी कोच का भी अगर कोई करते हैं कोच के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो आगे जाके सिखाने के लिए बच्चों को खुद का एकेडमी खोलने का मौका अगर कोच का उसने वो कोर्स करके आए तो अपना एकेडमी भी खोल के बच्चों को तैयार कर सकता है अपना एक बिजनेस भी
1: बख्शी डॉक्टर मुर्तजा साहब दिनी प्रोग्राम सेहत प्रोग्राम जो सेनो खेल छिक मैं जरूर सोचू तंगाल लाशिक बेद ना तो यार ऑफिस लश न जॉब बात न जमींदारी न स्टेनिक न बोंग तंग अट्टा जिलो शास्त्र मैंने सासा ची समय जो डॉक्टर मुर्तजा साहब के दी खेल पो हर किसी के लिए है जखन सोशिक दी दी सगेत प्रोग्राम में का सुख
0: ये रे से नजर जो है अतां दरे मेंटल स्ट्रेस माना फ्रू मांगवा जैसे स्कूल के मैं जो स्ट्रेस मांगवा सोसद जो नाची जैसे दरे एक प्रोजेक्ट भी नाचा सेंशन सोसद जो ISSR वहां से दिल्ली से समझू वहां से हमारा एक प्रोजेक्ट भी हुआ है कि जी मेंटल स्ट्रेस को कैसे हम कम कर सकते हैं तो थ्रू स्पोर्ट्स में ना जो थ्रू योगा हम इसको कैसे बच्चों को सही इसमें ला सकते बहुत से लोग आज जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट में ना जो हम टीन एज माना काफी मेंटल स्ट्रेस में चल रहा है तो मोबाइल बहुत कुछ मेंटली डिस्ट्रैक्ट अच्छे हमारा रिसर्च चल रहा है जो हर जगह जैसे हमारा द्रास रीजन में चला है अब करगिल में फिर हमारा आर्यन वैली में चल रहा है तो उन पर कोई बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है क्योंकि ऊपर ज्यादा तो लोड बहुत ज्यादा लोड आया हुआ है उस बीच में से उनको निकाल के एक अच्छे पहले उनको मौका दिया जाए हमारा मकसद ही यही है कि उनको कैसे हम स्ट्रेस को कम करने के लिए जहाँ ड्रग्स कम करने
1: के हमने
0: कुछ इवेंट्स करके उनको इनाम जिता से उनको एक कोशिश कर रहा है कि उन्हें ग्राउंड में बुलाए सारे मोबाइल या जो भी सब कुछ हटाना है मोबाइल अलाउड नहीं वहां जाके उनको ग्राउंड में ला के उनका कंपटीशन करके उनको मेडल दे के सबके सामने उसका अप्रिशिएट बना जो उन सबसे काफी काउंसलिंग काफी दिन लिखे पाया कि कुछ नहीं है यही सब कुछ मिसाल चाउमिन में काफी एक लेवल उनका टेस्ट लिया उनका कोर्टिसोल हमने टेस्ट लिया उनका सब कुछ करके देखा तो मेंटली वो स्ट्रेस इसे में है एक तो वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा है घर का प्रॉब्लम ऐसे और स्कूल में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको अब ग्राउंड में ला के ये सब करने से थक से क्या था काफी देने चले तो मेन मकसद तो सर जिस स्पोर्ट्स के थ्रू हम उनको ऐसे सही लंबे का या को स्ट्रेस उनको हम कर सकते हैं ऐसे भी रिक्रिएशन गेम बहुत से हैं ताकि उसके चंग हम सब कुछ भूल जाके वो खेलते हैं हंसते हुए खेलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं छा दो दोनों छिन्न पड़ना मेन मकसद पो जाए जो है ये स्पोर्ट्स को बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक पार्ट्स स्कूल कॉलेज शख्स जो दरे दरे ना स्कूल का खेल यात्रा जरे टॉपिक इंट्रोड्यूस हो सद जो फ्रून ला दरे यन में सब कोशिश सुन से फ्रून ला की हमारे फिजिकल टीचर शायद उनको पढ़ा रहा है कि खेल यात्रा इस ताकि वो लोग आगे ऐसे चीजों से बच जाए मैं ना जो मेंटल स्ट्रेस या कुछ भी आगे लाने का

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
1: मैं यहाँ हूँ।
2: तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना था।
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा आम हो जाएगा।
1: देखा
2: अब्बू, रुकिए मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: आरबीआई कहता है
1: करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

डॉक्टर आशा माथु साइकोलॉजिस्ट नेचुरोपैथिक दोना होम्योपैथिक फिजिशियन स्पेशलिस्ट कारगिल लेप्सियोत रुस्पेजर्मो स्केटपेजर्मो सेजर्मो गोएजर्मो हेपेटाइटिस थायराइड पुक्समेजर्मो मेल फीमेल प्रॉब्लम्स दोना गा मरीशिग्योतना पासगो होटल एंड रेस्टोरेंट लाल चौक कारगिल्ला मोतुगी तुसुरगुई कना फितोगे तुसुरगा सापेक्ष ताचाइन यंग यंते तख्तो मिंग नजरना डॉक्टर जामा खाचिक कारगिल्ला जुक्शाइन्सु

0: कितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: 67 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद किया जा रहा है। इस संकल्प का मकसद नशा मुक्त वादों दस्तखत करने की मुहिम, नुक्कड़ नाटक, नारे तहरीर करने और नौजवानों की जेर क्यादत मुबहसों के जरिए मजकूरा मुहिम का पैगाम सीधे नौजवानों तक पहुंचाना है। भारत को हर शोबे में तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हुकूमत पहले रोज से ही कोशां है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती मनसूबे तरतीब देकर अमलाए जा रहे हैं। इन्हीं मनसूबों में पीएम गति शक्ति भी है, जिसके तहत हवाई, जमीनी और रेल राबितों में माकूलियत लाई जा रही है। पीएम गति शक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में भी कई प्रोजेक्टों पर काम जारी है और दूर उफ्तादा इलाकों को भी शहर देहात से जोड़ने के लिए बड़े बड़े सड़क प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। खास बात यह है कि इन तमाम मनसूबों के दरमियान एक ऐसा तालमेल कायम किया जा रहा है ताकि ये मनसूबे हर जाविये से अवाम और मुल्क के लिए सूदमंद साबित हो सकें। पीएम गति शक्ति से मुतालिक पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने
2: मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की को मजबूत, तेज रफ्तार और मौसर बनाने के मकसद से शुरू किया गया पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी के शोबे में एक अहम कदम साबित हो रहा है। अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए इस मनसूबे के तहत सड़क, रेल, बंदरगाह, आबी गुजरगाह, हवाई अड्डों, तवानाई और टेलीकम्युनिकेशन समेत मुख्तलिफ शोबों के आदाद शुमार को एक मजबूत जुग्राफियाई प्लेटफार्म पर लाया गया है। इसका मकसद मुख्तलिफ मनसूबों के दरमियान बेहतर तालमेल, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आखिरी सिरे तक राबिते को यकीनी बनाना है। ताजा सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक नेशनल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए अब तक 396 बुनियादी ढांचे के मनसूबों का जायजा लिया जा चुका है, जिनकी मजमुई तखमीना लागत तकरीबन 18,66,000 करोड़ रुपए है। इनमें से 256 मनसूबों को मंजूरी दी गई है जबकि 158 मनसूबों पर काम जारी है। जम्मू कश्मीर के लिए भी पीएम गति शक्ति खास अहमियत रखता है, जहां सड़क, रेल, हवाई राबिते और लॉजिस्टिक्स को मजबूत बनाकर दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी, सनती सरगर्मियों और जरीव बागबानी पैदावार की तरसील को मजीद मौसर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। सैयद मुबश्शिर रुफाई, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच के नए ऑफिस कम कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर में कैट के बेंचों का कयाम सिर्फ के मामलों में तेज रफ्तार और काबिल रसाई इंसाफ फराहम करने के लिए ट्रिब्यूनल की सलाहियत को जाहिर करता है। ट्रिब्यूनल की मजमू कारकर्दगी के बारे में उन्होंने कहा कि इसके कयाम से लेकर आज तक कुल 10 लाख से जायद केस दर्ज किए गए, जिनमें से 9,32,000 से जायद केसों का निपटारा किया गया है। मरकजी सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक लाजमी होगी। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मुताबिक तस्दीकशुदा सार्फिन ही मुकर्र कीमत पर काबिल इतलाक सब्सिडी के साथ रिफिल बुक करा सकेंगे। इस इकदाम का मकसद जाली और गैर अहल कनेक्शन खत्म करके सब्सिडी के शफाफ और मुस्तहक घरानों तक फराहमी यकीनी बनाना है। 27,43,00,000 सार्फिन की तस्दीक पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ सहाफी पायल मेहता के आज अचानक इंतकाल होने पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में पायल मेहता को मेहनती सहाफी करार देते हुए कहा कि वो जमीनी हकायक से मजबूती से जुड़ी हुई थीं और कौमी अमूर पर गहरी समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थी। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सहाफती दुनिया की मारूफ सहाफी पायल मेहता के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि पायल मेहता के इंतकाल से सहाफत के शोबे में एक खला पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सहाफत के तई आजहानी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने सोगवार खानदान के साथ दिल्ली हमदर्दी का भी इजहार किया। बीजेपी की यूटी भर में जारी अवामी राबता मुहिम के तहत पार्टी के सीनियर लीडर और कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने श्रीनगर में पिछले कई रोज के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता वफूद से मुलाकात की, जिन्होंने मौसूफ को अपने मुतलका शोबों को दरपेश मसाइल मुश्किल से आगाह किया। राज्यसभा मेंबर और बीजेपी लीडर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क ने बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और अवामी फलाह बहबूद के शोबों में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है। मौसूफ ने जम्मू कश्मीर में आईआईएम, आईआईटी, एम्स, रिंग रोड, जोजिला टनल और रेलवे राबते समेत मुख्तलिफ मनसूबों को मौजूदा हुकूमत की तरक्याती पॉलिसी का हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के नतीजे में खित्ते में राबताकारी बेहतर हुई है। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी मोमिनाबाद श्रीनगर में मनुष्यात से मुतलिक एक रोजा बेदारी प्रोग्राम मुनक्द हुआ। प्रोग्राम में अदालती अफसरान, इस्तगासा, पुलिस, एनसीबी और दीगर मुतलिक इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने एनडीपीएस एक्ट

जब इसके समरात मुआशरे के आखिरी फर्द तक पहुँचे। यही तस्वर सेवा संकल्प अभियान के बुनियादी पैगाम में नुमाया है। सेवा महज एक प्रोग्राम या वक्ती सरगर्मी नहीं बल्कि मुआशरे और कौम के तई एक जिम्मेदारी भी है। अवामी खिदमत में शिफाफियत, जवाबदेही और जरूरतमंद अफराद तक बरवक्त मदद पहुँचाना इस जिम्मेदारी के अहम पहलू हैं। इस मुहिम के जरिए आम शहरियों को सरकारी स्कीमों, फलाही सहूलियात, रोजगार के मौके, तालीम, सेहत, समाजी तहफ्फुज और दीगर अवामी खिदमत के बारे में आगाह किया जा सकता है। दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद, बुजुर्ग शहरियों, खवातीन, नौजवानों, किसानों, मेहनतकशों और दीगर जरूरतमंद तबकात तक सरकारी सहूलियात पहुंचाने के लिए मकामी सतह पर मौसर रबताकारी इंतहाई अहम। खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे जग्राफियाई एतबार से मुतनौ खत्ते में अवामी आगाही और इंतजामिया व अवाम के दरमियान मुसलसल रबता कई मसाइल को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुस्तहक शख्स को किसी सरकारी स्कीम की मालूमात नहीं होती या वो दरखास्त देने के तरीकेकार से वाकिफ नहीं होता। बाज़ औक़ात दस्तावेजात, रजिस्ट्रेशन या दीगर रस्मी कार्रवाई भी इसके लिए मुश्किल बन जाती है। नतीजतन वो ऐसी सहूलियात से महरूम रह जाता है जिसका वो हकदार होता है। ऐसे में सेवा सेतु जैसे कैंप एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इन कैंपों में लोगों को मालूमात फराहम करने के साथ रजिस्ट्रेशन, दरखास्त और जरूरी दस्तावेजात के बारे में रहनुमाई भी दी जाए तो सरकारी स्कीमों की रसाई मजीद बेहतर बनाई जा सकती है। यदि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जरिए सरकारी सहूलियात और अवामी फलाही मनसूबों की मालूमात ज्यादा तेजी से आम लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। सेवा संकल्प अभियान का पैगाम सिर्फ सरकारी खिदमत तक रसाई आसान बनाने तक महदूद नहीं बल्कि माशरे में खिदमत, ताउन, जिम्मेदारी और हमें एतमाद के जज्बे को फरोग देने से भी मुतल्लिक है। जरूरत इस बात की है कि ऐसी मुहिमात को महज एक मुकर्रर मुद्दत की सरगर्मी न बनाया जाए बल्कि उन्हें मुस्तकिल अवामी राबते का जरिया बनाया जाए। शिफाफियत, मौसर निगरानी, बरवक्त मालूमात और जमीनी सतह पर अमली इकदामात के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि कोई भी मुस्तहक शहरी बुनियादी सहूलियात और सरकारी फलाही स्कीमों से महरूम न रहे। अगर हुकूमत, इंतजामिया और अवाम मिलकर खिदमत के इस जज्बे को मुसलसल अमली शक्ल दें तो एक ज्यादा बाइख्तियार, खुद कफील और फलाही मुआशरे की तश्कील की राह हमवार हो सकती है। यही सेवा संकल्प अभियान के वसीतर मकसद और अवामी खिदमत के हकीकी तस्वुर की बुनियाद है। तबसरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।

ये हिंद फौजी भाइयों, फौजी भाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामिन को मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में महबूबा फिल्म से गीत सुनते हैं, जिसे गाए हैं लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार

0: तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश।
1: फिर भी मेरा मन प्यासा।
2: बंद करो ये गाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
3: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
2: तुम यहां
3: ये तो वो जगह है जहां संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। तुम चलकर अपनी आंखों से देख, कुछ याद आया? कुछ भी नहीं। ये वही राज दरबार है, कुछ भी तो नहीं बदला। ये दीवाने खास है।

देखो ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा।

0: लीजिए दोस्तों, अगला नगमा दीवाने हुए पागल फिल्म से सुनते हैं, जिसे गाए हैं कुणाल गांजावाला, शान और साथियों ने। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक। पहले ये वक्फा।
1: दीदी, नौकरी मिल गई।
2: अरे वाह, मुबारक हो, फिर तो ढेर सी शॉपिंग।
1: हाँ दीदी, नया मोबाइल, जींस जैकेट।
2: खैरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च।
1: इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीदी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।

0: Дахан сапаян тез програм мен эпинишүн махмени фя медиа мека дива кашмани
1: телика
0: воспутус ядна мен эпинишүн гачын да газата кашмани телика хинди англизи дона уди ахван релевет лела дамбаз
1: 8:45 минут хоне ко хэ ор аб се кучи дер бад аб сунинге самачар сандхя крупя самачару ки пратиксха кижие. नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी

0: कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और मैं हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता

0: संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
1: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल एटीएस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और एनआईए ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
2: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
3: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
2: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
4: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
5: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों

0: में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. Now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
3: Climate change manav astitva ke anek staron par

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तआवुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरक फजाई मशक के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की ये पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रूपये का इनाम था वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रोनुमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबोहवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी तआवुन की फौरी जरूरत है ताकि आबोहवा की तब्दीली के मुजिर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया आज शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनक़िदा माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रही थीं।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय

0: सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: सदर मुर्मू ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनवो, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसायल भी शामिल हैं।
0: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: भारतीय फजाइया के सरबराह मार्शल एपी सिंह और जापानी फजाइया जेएएसटीएफ के सरबराह जनरल ताके हिरो मोरिता ने आज जोधपुर में फजाई करतब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के जंगजू तैयारे तेजस की परवाज की। दोनों सरबराहान ने ये परवाजें साथ साथ की। दोनों मुल्कों के फजाई सरबराहान ने ये परवाजें भारतीय फजाइया और जापानी फजाइया की मुश्तरका फजाई मशक वीर गार्डियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फजाइया के जंगजू तैयारे इस दो तरफा मशक के तौर पर भारतीय सरजमीन पर परवाज कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी में मजीद गहराई लाना है। फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने इस मशक को भारत जापान दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ा संग मील करार दिया है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस की परवाज का जनरल मोरिता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीक तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्डियन 2026 मशक का आगाज 9 सितंबर को हुआ था और ये 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फजाई शो के तहत एक सहरंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हॉक MK-132 सैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिका संजय सेठ ने इस शो का नजारा किया और टीम की यह कहते हुए तारीफ की कि इस फजाई शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। ये दो रोजा फजाई शो कल शुरू हुआ था। वजारत दिफा ने बताया कि तलबा एनसीसी कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस के रजाकारों समेत 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस शो का नजारा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सेठ ने इस तकरीब को उसूल पसंदी, एहतियात से की जाने वाली कार्रवाई, तालमेल के साथ किए जाने वाले काम, पेशावाराना महारत का एक काबिले जिक्र इम्तिजाज और भारतीय फजाइया की शानदार सलाहियतों का एक सबूत करार दिया। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS ने आज वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC के सरबराह ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरदार जी को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। ब्रजेश गंझू तकरीबन 2 दहाइयों से मफरूर था। झारखंड पुलिस और कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने उसके ताल्लुक से मालूमात फराहम करने पर मजमूई तौर पर 30,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। उसके खिलाफ अगवा, जबरी वसूली, आतिशजनी, मुजरमाना साजिश और सरकारी मुलाजमीन पर हमलों समेत 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में आम शहरियों और पुलिस अहलकारों की मुबैना हलाकतें भी शामिल थीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने इस एनकाउंटर में शामिल ATS टीम के लिए 2,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। गंजू के लिए ऐलान करदा कुल इनामी रकम में से 25,00,000 रुपए झारखंड पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, जबकि NIA ने 5,00,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। यूक्रेन ने रूस पर रात भर 1,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें मास्को को निशाना बनाकर किए गए सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल हैं। मास्को के मेयर सर्गेई सोवियनिन ने इसे राजधानी पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है और एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। जनाब सोवियनिन ने बताया कि मास्को के वसी इलाके में इस हमले से 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि उसकी फौजों ने मुल्क में 1,100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बहुत से मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए मिसाइल भी शामिल थे। पाकिस्तानी हुक्काम ने जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अगले हफ्ते उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI की तरफ से एक मनसूबा बंद एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया गया है। अलीमा खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया।

वो अपने 73 साल भाई की रिहाई के लिए मुहिम चला रही हैं, जो 2023 से कैद में हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में अवामी नज्म व नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुक्काम को यह अख्तियार हासिल है कि वो ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो अवामी जगहों और नज्म व नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। खान की पीटीआई पार्टी साबिक क्रिकेटर और सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को एक एहतजाज का मंसूबा बना रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफर जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है

0: एक ऐसा सफर जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे जदीद तरीन और आला मेयार के कन्वेंशन और नुमाइशगाहों के जरिए इस विजन को किस तरह अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के आलमी मयार के नुमाइश और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में जिनका मकसद भारत को माइस यानी इजलास तरगीबात कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों के शोबे में आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका इलाके में यशोभूमि का इफ्तिताह किया था। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं और 11,000 मंदूबीन की गुंजाइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई 2023 में भारत मंडपम मुल्क के लिए वक्फ किया था। भारत मंडपम में G20 सरबराह मीटिंग और हाल ही में मुनक़दा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग जैसे अहम आलमी इज्तिमात मुनक़द हो चुके हैं। इसके शानदार हॉल में मजमूई तौर पर 7,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की गुंजाइश से भी ज्यादा है। भारत मंडपम का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा था कि यह कन्वेंशन सेंटर मुल्क में कॉन्फ्रेंसों से मुतालिक सियाहत को फरोग देगा।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों कारीगरों बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आकाशवाणी से बात करते हुए एक तालिब इल्म ऋतिक, जिसने भारत मंडपम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है और रजाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, बताया कि इस आलमी मयार के मकाम ने भारत में तकरीबात के मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही मुल्क में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े मराकज बन चुके हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस माह की 26 तारीख को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के आला सतह के सेशन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मुख्तलिफ कसीर जहती और दो तरफा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का मौसम खजां का सेशन कल से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 10 रोजा सेशन 7 इजलास के साथ 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सेशन के दौरान हुकूमत मुख्तलिफ कानूनी तजावीज पेश करेगी, जिसमें जीएसटी से मुतालिक तजावीज बल्दियाती हुकूमत और तिजारत के तरीकेकार शामिल हैं। आज मुल्क भर में संकल्प समारोह का इनेकाद किया गया, जो 100 हफ्ते के नशा मुक्त युवा अभियान के हिस्से के तौर पर था। अभियान का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशे से पाक एक नौजवान बिरादरी तैयार करना था। नौजवानों और खेलकूद की वजारत ने बताया कि इस मुहिम में नौजवानों ने सरगर्म हिस्सा लिया और पूरे मुल्क में 1067 जगहों पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2-3 रोज के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ मगरबी बंगाल के गंगा के इलाके कर्नाटक कोंकण और गोवा मध्य महाराष्ट्र और शुमाल मशरक के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। जापान के शिनागोया में जारी एशियन गेम्स के आज इफ्तिताही दिन भारत ने चांदी के दो तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की है। तीन खिलाड़ियों की टीम दरसा विनोद एलवेनिल वेलावीरा और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि एलवेनिल ने भी इनफरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की है। शिफाली वर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी 49 गेंदों पर 100 रन बनाई। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिका तिरियाल एशियन गेम्स